मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026 है। इस वक्त सवेरे के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बज रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को

0: ट्रेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जब भी टूटने लगे हौसला और आस, भगवान दिलाते हैं कि मैं हूं, ये दिलासा कि मैं हूं तेरे पास। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना लेकर हाजिर हूं मैं आपकी डिटी दोस्त कामिनी।

भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, टूट जाए जो आसानी से वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना है, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता।

प्रभु की ज्योति से नूर मिलता है, भक्तों के दिलों को सुकून मिलता है। प्रभु के द्वार आता है जो भी, उन सबको फल जरूर मिलता है।

मन की आंखों से प्रभु का दीदार करो। दो पल का है अंधेरा, बस सुबह का इंतजार करो। क्या रखा है आपस के बैर में, छोटी सी जिंदगी है, हर किसी से प्यार करो।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:35 हो रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें, हमारे केंद्र से रेलवे प्रसारित किए जाने वाले खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत

अब से कुछ ही देर में यानी 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान पाठ। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज 6:50 पर। दोपहर 2:30 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत और शाम 7 सुनेंगे खेती और घर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:45 पर, सवेरे 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का आप आज सुनेंगे सवेरे 11 बजे। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 7 बजे, सवेरे 10 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 1:45 पर, शाम को 6:05 पर, रात्रि 8 बजे, रात्रि 9:30 पर और रात्रि 10 बजे भी आप फिल्मी नगमे सुन सकेंगे।

युवाणी हमारे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एनसीईआरटी का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर आप सुन सकते हैं सवेरे 8:30 से 9:30 पर।

तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से रेलवे प्रसारित किए जाने वाले खास खास कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:40 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवासे पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण

सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस गान। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

राम राम किसान भाई, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम री टेम वी और मो आयो आपने घनी सारी जानकारी देवार वास्ते। तो आज जो जानकारी देवा सा वह है कुष्मांड कुल की जो सब्जियां व्या करे वन में कीट नियंत्रण आपकी कणी तरीकों करी सका। अब कुष्मांड कुल की जो सब्जियां है वन आपकी कद्दू वर्गीय सब्जियां का नाम भी जाना हा। और अनार महीने देखो कि लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, करेला है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, ये सब व्या करे। अब कद्दू वर्गीय सब्जियाँ जो है विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन और प्रमुख स्रोत जो अणा ने मानी गया है। और अणी हिसाब वो कही है कि अणी वर्ग की सब्जियां हैं प्रमुख जो है वणा का कीट कई तरह का व्या करे और वणा को नियंत्रण आप भी कई तरीकों कर सका एक ही जानकारी देवा सा। तो बात यह है कि देखो लाल मकड़ी नाम का जो कीट व्या करे जिन्हें मापी जो है बरूथी भी कहवा। और यो देखो कि शिशु अवस्था में, वयस्क अवस्था में दो ही तरह की अवस्था रहा महीने यो कही करे कि पौधा ने नुकसान पहुँचा और काम करे। और यह जो मकड़ी व्या करे या पत्यारा निचला सतह पे जो लागे है और वण को जो रस चूसता देखा नुकसान पहुँचावे। अणियो कही है कि पत्तियां जो है सफ़ेद धब्बातार वही जावे और बाद में कही के भूरा रंग की वही जावे। तो अणियो कही है कि देखो रेशमी जाल जो वणे वणे पत्तियां ने जो है डांक देवे तो उनमें हवा की जो चालवा की स्थिति है, जमीन पे मिट्टी का कण है, वह सब जाड़ा महीने लटकी जावे और जो है सघन जो काम वण को वही जावे। अणी हिसाब वो कही है कि पत्यारा महीने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह बंद वही जावे और प्रभावित वताधिकारी जो पत्तियां है वह गिरवा लाग जावे। फूल और फल जो है दो ही जो है अपना कम लागवा की स्थिति में उत्पादन पे जो है भारी कमी आपने देखवाने मिले। अब अंडा नियंत्रण रा वास्ता अपन कई करनो है। अणी का नियंत्रण रा वास्ता अपने इथियोन 50 EC 0.6 ml प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाई जो है घोल बनावनो है और इनको छिड़काव अपने करनो है। दूसरी जो कीट लागे अणमें विने के वहाँ पी फल मक्की प्रोड और लट दो ही तरह की अवस्था रहा महीने जो पौधा का ऊपर नुकसान पहुँचा और काम फल मक्की करे है। प्रोड मक्की अपना अंड निक्षेपक जो व्या करे वण की मदद हूँ जो है फल में छेदन कर वणी को गुदा ने जो है वण में अंडा देवा लाग जावे। अणी कही है कि बारूँ यदि छेद एक लसदार जो पदार्थ के रूप में वापस बंद वे जावे और अंडा जो है वह

तीनों पांच दिनों में लट में बदल जावे, वे में निकल जो है फल जो है वण के अंदर ही अंदर जो है खाती रहे, जणियों कही है कि फल सड़वा लाग जावे और गिरवा लाग जावे। वण के नियंत्रण रे वास्ते कई करनो है कि काणा जो वे फल वण ने तोड़ी जो है जमीन रमाइने दबाई जो गड्ढा ने बंद कर देनो, वण ने नष्ट कर देनो। मेलाथियान 50 ईसी या पचे डाई मिथियोट 30 ईसी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रमाइने दारू गोल मिलाइन छिड़काव आपने करना चाहे। और जो इनमें कीड़ो व्या करे वो है लाल ब्रिंग। लट और ब्रंग दो ही प्रकार की अवस्था रमाइने जो पौधा ने नुकसान पहुंचा रहे काम करे है। और ब्रंग पौधा जो व्या करे वो अपना पत्ता ने जो है शिराओं जो है बीच में बाग में खावा लाग जावे, छोटा छोटा छेद वन में कर देवे। अणी को कही है कि प्रकोप आपने दिखवा लाग जावे। सुंडिया जो है जमीन के अंदर रेवा की स्थिति में अपने पौधा का तना है जड़ा है वन में भी खाती रहे। तो अंडे नियंत्रण वास्ते कही करनो एक नियंत्रण वास्ते अपने एसीफेड 75 SP आधा ग्राम प्रति लीटर पानी रमाइने दर में गोल मिलाइन छिड़काव करना चाहे या पचे 15 दाना रमाइने अंतराल में आणी गोल ने दोहराव करना चाहे। आपने कुष्मांड कुल की जो सब्जियां है वन में समन्वित कीट प्रबंधन जो है वन की बात करना तो गर्मी की टाइम पे खेत रमाइने 2-3 बार गहरी जुताई करनी चाहे, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक को उपयोग करना चाहे, और सब्जियां की बुवाई की टाइम पे अपन ने पहली और अक्टूबर नवंबर को जो महीनों यदि वे वाणी टाइम पे लाल ब्रंग को प्रकोप जो है कम वे तो ये भी अपने ध्यान रखना चाहे। सारा महीने टेम टेम पे अपने निराई गुड़ाई करता रहना चाहे। लाल ब्रंग की अवयस्क अवस्था जो वे है फूल मक्खी के शंखुआ की जो व्यवस्था वे है वणी में अपने नियंत्रण अवस्था अपना प्रयास करना चाहे। राख को बुरकाव करना तो लाल ब्रंग को आक्रमण जो है वो कम बी जावे। फल मक्खी व सफेद मक्खी की जो है वण की निगरानी करता देखा जाए अपने मिथाइल और यूजेनॉल पास जो है वण को और चिपचिपा पास को प्रयोग अपने करना चाहे। अप्रैल को महीनों जो है वणी लेने जुलाई को महीना मतलब अब आ वाली जो टेम है वणी तक अपने वयस्क मक्खी जो है वण की रोकथाम वास्ते अपने जहरीला पानी जो है वणी को जो है गोल बनाने खेत रमाइने जगह जगह पे अपने रखना चाहे। अणी कही है कि 500 ग्राम गुड़ जो है 2 लीटर पानी रमाइने गोल मिलाइन अपन मेलाथियान 50 ईसी 20 मिलीलीटर दवा जो है वहाँ मिलावनी चाहे। मिट्टी का प्याला जो है वणी रमाइने 50 मिलीलीटर गोल प्रति प्याला रमाइने डालन अपन एक कीट ने आकर्षित कर नष्ट करना चाहे। और देखो कि फल मक्की क्यों जो ग्रसित फल है जो है वणी के इकट्ठा करवा वास्ते अपने गड्ढा खोदना चाहे और यदि इकट्ठा भी चाहे तो गड्ढा में वणा ने दबाई देना चाहे, वणा को जीवन चक्र जो है नहीं बढ़वा देना चाहे। मकड़ी का नियंत्रण वास्ते ने आपने कई करना है कि प्रोपराइजाइट 57 EC दवा जो है वह प्रति लीटर और या पचे डाइकोफॉल 18.5 EC 2 मिलीलीटर दवा जो है प्रति लीटर पानी रे महीने मिलाइन छिड़काव करना चाहे। तो कीट की संख्या ने आर्थिक हानि के स्तर पे भी अपन पहुंचाओ और काम ये करे है। तो अपन ने पहला जो है कीटनाशक प्रबंधन का वास्ते मौजूद जो तरीका है वे अपनाना चाहे। सुसंगत और समन्वित रूप जो है अपनाओ तरीका आप नाशी कीट जो है विकी रोकथाम करना चाहे और कीटनाशक जो है विका दुष्प्रभाव इनको वातावरण जो दूषित करवा का और बचवा वास्ते अपन प्रयास करना चाहे। तो अणी हिसाब कही आप कुष्मांड कुल की जो सब्जियां है वणा में कीट नियंत्रण को काम आप ही कर सका। एक बार फाची बता दूं कि लाल मकड़ी नाम को जो है कीट व्या करे और फल मक्खी नाम को कीट व्या करे, लाल ब्रंग नाम को कीट व्या करे। जे कही है कि अपना कुष्मांड कुल की जो सब्जियां है वणा महीने नुकसान पहुंचाओ और काम करे। कुष्मांड कुल की जो सब्जियां अपना किसान भाई करे वण में लौकी की बुआई करे, कद्दू की बुआई करे, टिंडा, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूज की बुआई अपना किसान भाई करे है। तो वणा ने जो है कुष्मांड कुल की जो सब्जियां है अणा की खेती आप ही कर रहे हैं तो किसान भाई ने ये जानकारी में वेणी चावे कि कणी कणी तरह का कीट लागे है और वणा को नियंत्रण आप ही कणी तरह कर सका। और किसान भाई जो है कि खेती करती टाइम पे बुवाई की टाइम पे अगर तैयारी पूरी करे और नियंत्रण काम करे तो कही है कि यदि फसल तैयार हुए वणी टाइम पे अपन नियंत्रण करवा में ज़्यादा परेशानी नहीं आवे और अपनी जो फसल सुरक्षित रह सके और अपनी फसल सुरक्षित रहेगा तो वणियों कही है कि अपना जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो अपन आर्थिक लाभ जो है वही होगा, आर्थिक नुकसान की संभावना जो है वह लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। तो अन्य तरह जो है किसान पाया ने कुछ सावधानियां बरतनी चाहे और सावधानियां बरतता दिखे काम करना चाहे। जो काम आप रोजमर्रा को खेती बाड़ी रो करा हाँ वणी रा मैनेज काम करना है, बस थोड़ा सा तरीका बदलन काम करना है, थोड़ा सा उपाय जो है वणी ने ज्यादा अपनाना है। तो अन्य तरह का उपाय करा तो आप जो है तो देखो रोग जो

तरह भी लागे कीट नियंत्रण अपन कर सके, कुछ मांडकुल की सब्जियां हैं वन की पैदावार अच्छी वही सके। जे किसान भाई जाने हैं कि कुछ मांडकुल की सब्जियां में कणी कणी तरह का कीट लागे है, तो वणा को जो है काम ये वणो चावे कि अपना आसपास का दूसरा किसान भाई जना ने अण की जानकारी नहीं वे, वणा ने आपकी जानकारी देना चाहवा। और अगर अपना किसान भाई ने कणी ने भी अणी तरह की जानकारी नहीं वे, तो अपना क्षेत्र में कृषि अधिकारी जो है, कृषि पर्यवेक्षक जो है, कृषि मित्र जो है, वणाओं आपकी जानकारी ले सका। और आजकल कही है कि मोबाइल के माध्यमों भी आपकी जानकारी ले वो बहुत आसानी है ले सका। तो अणी सब कही है कि आपकी सरकारी योजना की जानकारी जनी तरह आपकी मोबाइल के माध्यमों ऐप का माध्यम लेवा, वणी तरह जो है आपकी कीट को जो है प्रकोप कतरो वे सके और वणी को आपकी कणे तरह का बचाव कर सका, इनकी जानकारी भी ले सका। तो यह जो जानकारी है अपना किसान भाईरा वास्ते बहुत ही लाभकारी साबित वेगा, यह उम्मीद मु करूं हूं। कार्यक्रम में जानकारी देवार वास्ते और भी है, पर घड़ी हमू नाणा तो वह कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है। तो जालासा राम राम सा।

खेती में आज किसान भाइयों ने सुना अभी अपना दैनिक कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। सवेरे के ठीक 7 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे, और सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा।

हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म दिल एक मंदिर के इस गीत के साथ में। आइए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अगले गाने में भी सुनते हैं, फिल्म दो रास्ते में।

दो रास्ते, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का ये नगमा आशा भोसले और बप्पी लहरी की आवाज़ में।

प्रेम प्रतिज्ञा के फिल्म के इस गीत के बाद आइए सुनते हैं गुलामी फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर और

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को अभी आपने सुना गुलामी फिल्म के इस खूबसूरत से नगमे में। आइए सदाबहार नगमों में अगला नगमा हम लेकर आए हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, फिल्म राम तेरी गंगा मैली से ये नगमा।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
9: सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से।
10: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

तेरे बिना जिया जाए ना, लता मंगेशकर की आवाज़ में घर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। और इसी के साथ सदाबहार नगमों का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 8 बजने को है। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे कुछ ही पलों में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार।
1: लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित

0: प्रोसेस होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियू में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र

0: तंत्र विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
2: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
3: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि

0: सपनों के जहां से अब लौट आओ, हुई है सुबह अब जाग जाओ, चांद तारों को अब कहकर अलविदा, इस नई दिन की खुशियों में खो जाओ। जी हाँ, आज मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त कामिनी और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और देखो आज कार्यक्रमों में क्या खास रहेगा, क्योंकि आज है ग्रीन एंड गेटअवे थर्सडे।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, ग्रीन एंड गेटअवे गुरुवार का जो ये दिन है, इस दिन हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले मॉर्निंग ब्रीफ में हम आप सभी को बताएंगे सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के बारे में।
1: बिल्कुल, और प्रमुख स्थानीय खबरें होंगी, T20 विश्व कप, फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएंगी।
0: इको टॉक में हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के बारे में,
1: और यात्रा संवाद में वेटलैंड सिटी पक्षी गांव लेकर चलेंगे आपको मीनार।
0: और अगर अवेयरनेस और जागरूकता की बातें करें तो हम कल और आज हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष की बातें करेंगे।
1: तो पहले शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ।

0: बिल्कुल, मौसम तो सुहाना हो गया है कामिनी, क्योंकि कल जो शाम को बारिश हुई है उसने वातावरण में ठंडक घोल दी है, है ना?
1: वाकई में, और इसी ठंडक ने हमको सारी बातों में ठंडक ला दी है।
0: और ये मौसम जो है उसने जो ये खेल का मौसम चल रहा है उसका मजे को और भी बढ़ा दिया है ना। तो फीफा वर्ल्ड कप की बात करें सबसे पहले कामिनी, तो कल रात को 10:30 पर ग्रुप के का पुर्तगाल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो मैच हुआ उसमें 1-1 से जो है ड्रॉ रहा ये मैच। और उसके बाद जो मुकाबला हुआ इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया का, वो एर्लिंगटन में मैदान पे हुआ और 4-2 से ये जो है मैच का अंत हुआ, और कप्तान हैरी केन ने 2 गोल इसमें किए हैं। ग्रुप एल के मैच की बात है तो पहला ये इंग्लैंड और क्रोएशिया का भी ग्रुप एल का पहला मैच था। ग्रुप एल का दूसरा मैच घाना और पनामा के बीच हुआ 4:30 पर, और टोरंटो के स्टेडियम में ये मैच रहा। 1-0 से घाना की टीम जीती है। और अभी जो मैच चल रहा है ग्रुप के का उज्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच मैक्सिको सिटी में चल रहा है। और ग्रुप ए का जो रात को मैच होगा 9:30 पर वो होगा चेकिया और साउथ अफ्रीका के बीच एटलांटा में।
1: और हम अगर महिला T20 विश्व कप की बात करें तो महिला T20 विश्व कप में भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स को 95 रन से मात दी। भारत की ग्रुप एक में ये लगातार दूसरी जीत है। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 209 रन बनाए, वहीं नीदरलैंड्स की टीम ने 17.3 ओवर में 114 रन बनाकर सिमट गई। और मंधाना लगातार दूसरी बार प्लेयर ऑफ द मैच बनी। और साथ ही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत की लय कायम रखते हुए यहां ICC T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। प्लेयर ऑफ द मैच एलिसा पेरी ने नाबाद 19 रन बनाए और 2 विकेट चटकाए। और आगे बात करें कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन के शतक से भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में 170 रन से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज में

0: शून्य से अजेय बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने वनडे में कुल 8वीं बार 400 प्लस का स्कोर बनाया। शुभमन गिल ने कप्तान के तौर पर अपना पहला वनडे शतक लगाया। उन्होंने 110 गेंदों में 22 चौकों और 2 छक्कों के साथ 154 रन बनाए।
1: क्या बात है। और देखो, वैसे जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है ना, उसकी धूम तो पूरे दुनिया भर में चल रही है। ग्रुप जे में अर्जेंटीना टॉप पर चल रही है, ग्रुप एल में इंग्लैंड और ग्रुप आई में नॉर्वे। और वैसे जो अभी हमने बताया कि उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया के बीच जो मैच खेला जा रहा है, तो 48 मिनट और 25 सेकंड का मैच हो चुका है और जिसमें उज़्बेकिस्तान कोई गोल नहीं कर सकी है, लेकिन कोलंबिया ने एक गोल दाग दिया है। देखते हैं मैच किसके पल्ले में जाता है।

0: कामिनी, इतिहास देखो इतनी आसानी से नहीं बनता। अनेक बलिदान, कई त्याग करने पड़ते हैं, और भारत का इतिहास जितना समृद्ध और रोमांच से भरपूर है ना, वैसा किसी अन्य देश का नहीं। वैसे भारतवर्ष ने अनेक जुल्म अन्याय सहे, पर इस भूमि के वीर सपूतों ने अत्याचारियों के नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दिया, है ना?
1: बिल्कुल मीनाक्षी।
0: और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जो जयंती है, वो तो हम इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। और कल के दिन की बात करें तो उदयपुर में हल्दीघाटी युद्ध के 450 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया गया। महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, स्वाभिमान, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का गौरवगान हर ओर गूंजा। मुख्य आयोजन राष्ट्रीय चेतना संकल्प सभा के रूप में हुआ शहर के गांधी ग्राउंड में, और इसमें कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हुए मेवाड़ के प्रबुद्ध जन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, मुख्यमंत्री हमारे माननीय भजनलाल शर्मा भी, और इसमें आगंतुकों का हल्दी घाटी की माटी से तिलक लगाकर स्वागत किया गया। आयोजन में सिंगल यूज प्लास्टिक से इसे मुक्त रखा गया, और गर्मी से बचाव के लिए पंडाल में पंखे, जल फुहार की व्यवस्था भी की गई, और मिट्टी से कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी युद्ध का दृश्य उकेरा गया।
1: साथ ही विशेष पूजन और अर्चन भी हुए। महाराणा प्रताप के त्याग, स्वाभिमान, राष्ट्र निष्ठा और संघर्ष के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का आह्वान भी किया। फतेह मेमोरियल में श्रद्धा एवं उत्साह के साथ अभिषेक व आरती कार्यक्रम भी मनाए गए, और महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा फतेह सिंह एवं महाराणा भोपाल सिंह की प्रतिमाओं का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक किया गया।
0: और शहर भर में देखो इस अवसर पर कई शोभा यात्राएं भी निकलीं, और जगह जगह पुष्पांजलि से उनका स्वागत किया गया। संगोष्ठियां हुई, दुग्धाभिषेक भी हुआ, सम्मान समारोह भी हुए, और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन इस अवसर पर हुए। कई समाजों ने, संगठनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महाराणा प्रताप के जीवन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, भामाशाहों और सप्तऋषि कार्यक्रम के सहयोगियों को महाराणा प्रताप सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया।
1: हाथीपुल मस्जिद के नीचे शोभा यात्रा का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया, तथा राहगीरों को छाछ भी वितरित की गई। चेतक सर्कल पर भी पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया।
0: तो देखो आज जो है वो 18 जून का दिन है। भारतीय इतिहास की वो अमर तिथि जो केवल एक युद्ध का स्मरण नहीं कराती कामिनी, बल्कि त्याग, स्वाभिमान, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की गाथा सुनाती है। ये वो दिन है जब मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में वीरता की अमिट छाप छोड़ दी। वर्ष 1576 में हल्दी घाटी के रूप में लड़ा गया ये युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं थी, बल्कि स्वतंत्रता, अधीनता, स्वाभिमान, सत्ता के बीच का निर्णायक संघर्ष था। वैसे वास्तव में कामिनी, हल्दी का जो युद्ध था महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद तो अगले 10 वर्षों में मेवाड़ में महाराणा ने स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी थी।
1: बिल्कुल मीनाक्षी, यह युद्ध राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के हल्दीघाटी दर्रे में हुआ। मुगलों की विशाल सेना लगभग 28,000 थी, जबकि मेवाड़ की सेना लगभग 4,000 घुड़सवार और 3,000 भील योद्धा भी शामिल थे। यद्यपि युद्ध जो था वो अनिर्णायक माना जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगलों की विशाल सेना के सामने कभी भी हार नहीं मानी और पराक्रम का परिचय दिया।
0: इतिहास में इस युद्ध को स्वतंत्रता, स्वाधीनता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इसमें महाराणा प्रताप की सेना कम होने के बावजूद उन्होंने मुगल सेना को जंगल और पहाड़ों में सिमटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप की वो वीर सम्राट ही थे कामिनी, जिन्होंने अकबर को हिंदुस्तान का शहंशाह बनने से रोके रखा था, और युद्ध से, षड्यंत्र से, धोखे से प्रताप को उन्होंने कई बार मारना चाहा, बंदी बनाना चाहा, लेकिन अकबर कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ। हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप, मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, और आज इस शौर्य और स्वाभिमान के संघर्ष के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मेवाड़, वागड़ सहित पूरे राजस्थान में विजयोत्सव और राष्ट्र चेतना समारोह आयोजित किए गए। देखो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला ये साक्षी है हल्दी घाटी की। आज भी ये ऐतिहासिक दिन, इसकी पीली मिट्टी मानो आज भी उन वीरों के रक्त से रंजित गौरवपूर्ण स्मृतियों को अपने भीतर संजय हुए है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मूल्य समझाया।

0: तो मीनाक्षी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम मॉर्निंग ब्रीफ में एक बार फिर से जाते हैं और बात करते हैं गैस्ट्रोनॉमी दिवस की।
1: सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस आज है और पर्यावरण के अनुकूल खेती करने, स्थानीय सामग्री का उपयोग करने और भोजन की बर्बादी को कम करने वाली खाना पकाने की पारंपरिक विधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस। और ये दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित भी रखता है।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, और इस दिन का खास उद्देश्य है ताकि हम लोगों को जागरूक बना सकें जो ऐसा भोजन चुने जो स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करे और जिसका उत्पादन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए किया गया हो।
1: गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ सिर्फ अच्छा भोजन पकाना या खाना नहीं, बल्कि ये एक कला है जो प्रकृति, संस्कृति और स्वास्थ्य को जोड़ती है। और 2026 ने सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी जो वीक है वो मनाया जा रहा है 16 तारीख से 22 जून तक, और इसका विषय है सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज। ये दिन स्थानीय मौसमी फलों, सब्जियों, अनाजों के उपयोग को प्रोत्साहित करता है जिससे परिवहन में होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। अपने आसपास के किसानों, छोटे उत्पादकों में मौसमी खाद्य सामग्री खरीदने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन कराया जाता है जिन्हें प्राकृतिक तरीके से उगाया गया हो, और ये दिन सिखाता है कि भोजन का सही प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि कचरा कम से कम फैले, और दुनिया भर की पारंपरिक और क्षेत्रीय कलाओं को सहेजने का कार्य करता है आज का विशेष दिन। ऐसी कृषि और खाद्य प्रणालियों का समर्थन करता है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखता है।

0: तो मीनाक्षी, कार्यक्रम यूं ही आगे जारी रहेगा, पर फिलहाल सवेरे के 9 बजने को है और ये वक्त है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्ध को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक

0: लगभग 1 लाख नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नंदली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी DPR तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल

0: रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी उदयपुर। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं कामिनी और मेरे साथ
2: मीनाक्षी। तो पहले एक गीत और फिर कुछ और बातें।

0: तो मीनाक्षी कार्यक्रम तो हमने शुरू कर दिया है और हमको बहुत सारी बातें भी करनी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, और हम कुछ ऐसी बातें करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण है तो हम हैं,
1: और इस पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी प्रयास हमें करने चाहिए ज़रूर करने चाहिए। और देखो, जैसे कल के आयोजन की भी हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे सिंगल यूज्ड जो प्लास्टिक है उससे मुक्त रखा गया था कार्यक्रम को, और वाकई में तो आज हम ऐसे ही प्लास्टिक की वस्तुओं की बात करेंगे जिन्हें केवल एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, सिंगल यूज प्लास्टिक जिन्हें कहते हैं। इन्हें नष्ट होने में कामिनी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाती हैं, और सिंगल यूज प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में क्योंकि इतना टाइम लगता है, इसे वैज्ञानिक रूप से रिसाइकलिंग कर यानी कि पिघलाकर नए उत्पाद में या तो कन्वर्ट किया जाता है या रीप्रोसेसिंग किया जाता है, जैसे कि सड़क निर्माण में उपयोग करते हैं, कटे फटे प्लास्टिक को डामर के साथ मिलाकर मजबूत और वाटरप्रूफ सड़कें बनाने में काम में लिया जाता है, या भस्मीकरण किया जाता है यानी कि बहुत ही ज्यादा ऊंचे तापमान पर इसको जलाया जाता है और इससे निकलने वाली जो ऊर्जा का उपयोग है वो बिजली बनाने में उसको काम में लिया जाता है, ऐसे ही नष्ट करते हैं, वरना ये नष्ट नहीं होते।
0: बिल्कुल मीनाक्षी, सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति का अर्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य और वन्य जीवों को इसके घातक प्रदूषण से बचाना है, जिसके लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लागू किया गया है और जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है। और इससे हम मुक्ति कैसे पाएं मीनाक्षी? सबसे पहले हमें जो हम कपड़े जो जूट के थैले हैं उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती हैं इनको हम अगर इस्तेमाल में लेंगे और इनसे जो आगे जो तक परिणाम आते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं।
1: हाँ, क्योंकि ये उड़के कहीं भी चली जाती हैं, अगर इनमें हम भोजन की सामग्री डाल के फेंकते हैं तो हमारे जो निर्जीव पशु हैं, बेजुबान पशु हैं, वो इन्हें खाकर उनकी जान को आ जाती है। और पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों की जगह तांबे, स्टील या कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम देखें तो हमारे जो उद्यान है, अभयारण्य है, वहाँ पर ये प्रयास शुरू भी किए गए हैं कि वहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं उनको कांच की बोतलें दी जा रही हैं पीने के पानी के लिए, और वाकई इससे पर्यावरण को हम संरक्षित कर पाएंगे। इको फ्रेंडली विकल्प हम चुन सकते हैं, शादियां और पार्टियों में प्लास्टिक की प्लेट, चम्मचों की जगह पत्तल, कुल्हड़ या लकड़ी से बने कटलरी का उपयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी कि कटलरी में अगर आप चाय कॉफी में कुल्हड़ का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टील के बर्तन का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ बांस या स्टील के चम्मच भी आप रख सकते हैं। साथ ही गिफ्ट पैकिंग के जो तरीके हैं उसको बदलेंगे तो भी हमारे जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है से हम मुक्ति पा सकते हैं। उपहार देने के लिए जो प्लास्टिक की पन्नियां होती है ना, उसे हम हटा करके साधारण जो कागज होते हैं या फिर कपड़े, जूट रैप, इनके जो रैपर होते हैं उनका उपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब तो देखो कई जगह प्लास्टिक की बजाय जो टूथब्रश है वो भी बैम्बू से बनाए जा रहे हैं। घर पर प्लास्टिक को कभी भी हमें आग लगा कर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो इससे जहरीली गैसें हैं वो निकलती हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। सड़क पर इधर उधर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए प्लास्टिक की चीज़ों को। घर से निकलने वाले कचरे को हमेशा सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करना चाहिए, ताकि घरेलू स्तर पर इसे जो है हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सके ताकि ये रिसाइकलिंग केंद्र तक पहुंच सके।
0: बिल्कुल, सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करके हमें न केवल प्रकृति को बचा सकते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य और भावी पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को

0: मीनाक्षी, कार्यक्रम में एक बहुत ही खास बातचीत करना रह गया है, वो है यात्रा संवाद। और यात्रा मतलब ट्रैवल टॉक हम ना करें तो क्या कहने,
1: मौसम सुहाना भी हुआ है तो देखो ट्रैवलिंग की बात तो आएगी ही।
0: तो ट्रैवलिंग की जब बात कर रहे हैं हम, तो पास के जो पर्यटन स्थल हैं उसमें आज हमने शामिल किया है मीनार को। मीनार जिसे आधिकारिक तौर पर रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, उदयपुर से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित एक जीवंत गांव है। राजस्थान के पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध इसकी दो झीलें ब्रह्मा तालाब और धन तालाब, जहाँ हर सर्दियों में 150 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों का घर होती है, जिनमें ग्रेटर फ्लेमिंगो और पेलिकन शामिल हैं।
1: बिल्कुल, बार हेडेड गूज, पेटेंट स्टार्क, कॉमन टील, नॉर्दर्न शोवेल।

0: ये भी जो है बहुत यहाँ पाए जाते हैं। यह सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। ये गांव चार भव्य मंदिरों से सुशोभित है जो नागरा शैली की वास्तुकला की एक आकर्षक कहानी बयां करते हैं। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये जीवंत वास्तु शिल्प कृतियां हैं जो इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और यहाँ के लोगों की अद्भुत शिल्पकारी की झलक पेश करते हैं। मीनार की संस्कृति का धड़कता दिल गैर नृत्य है। रक्षाबंधन के बाद होने वाले 40 दिनों के गौरी उत्सव के दौरान मीनार वास्तव में जीवंत हो उठता है। अक्टूबर में नवरात्रि के दौरान मीनार में भव्य रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है। मीनार की बात करते हैं तो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता भी प्राप्त है और सम्मान इन निर्मल क्षेत्रों में फलते फूलते समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रतीक है। आज ये झीलें 150 से अधिक पशु पक्षियों के विविध समुदाय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की मछलियों और सरीसृपों को भी आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे इसे प्रकृति प्रेमियों के स्वर्ग का प्रतिष्ठित खिताब भी प्राप्त हुआ है।
1: हाँ मीनाक्षी, और पक्षी अवलोकन की अगर यहाँ बात करें तो यह गांव आधिकारिक तौर पर एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है। स्थानीय संरक्षणवादी, जिन्हें पक्षी मित्र के नाम से जाना जाता है, आर्द्र भूमि की रक्षा करते हैं, जिससे सैंड पाइपर, मार्श हैरियर और पेलिकन जैसे विविध पक्षी जीवन को देखने में जो अवसर है वो शानदार अवसर यहाँ मिलता है देखने का।
0: और कामिनी, वन विभाग हर साल जनवरी फरवरी में पक्षी महोत्सव का यहाँ पर आयोजन करता है जो कि आकाश में इंद्रधनुषी रंग बिखेर देता है। और इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता, प्रतिष्ठित अधिकारी एकत्रित होते हैं, जहाँ प्रकृति की गोद में प्रत्येक पक्षी को एक अनमोल अभयारण्य प्राप्त होता है। तो जरूर जाइएगा मीनार जब आएगा सीजन, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच। तो वेटलैंड सिटी की हमने बात की और अब इजाजत लेने का समय भी हो गया है। तो कामिनी, आज श्रोताओं को बता दें, आज कार्यक्रम में मैं थी मीनाक्षी
1: और मैं थी कामिनी,
0: और सुनिए ये गीत और दीजिए हमें इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना आकाशवाणी उदयपुर से। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं, लीजिए अब सुनिए। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया

0: में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहां तक मछलियों की बात है, यहां मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहां लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओ, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओ, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी

के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा कर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी, वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुम

0: तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो?
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
0: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास

0: आ नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया, तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल

0: मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया,

0: जाते हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
1: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
1: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर अभी कहाँ,
3: अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
4: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
5: जी मालिक।
1: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
1: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
6: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा,
7: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
6: बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
8: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओ, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
11: उमंग, उमंग। ये प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 10 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शीर्षक गीत फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। और आज का हमारा शीर्षक क्या है, आप ये गीत सुन करके हमें बता सकते हैं और समझ सकते हैं कि

दिल तो है दिल, दिल का एतबार ना कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल से तो जुड़ी हुई है हमारी हर बात। तो मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। और दिल ही वो शब्द है जो आज हमने इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम शीर्षक गीत में लिया है। तो आइए दिल की और बातें करें, क्योंकि ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। जी हाँ, दिल बिल्कुल कभी नहीं लगता जब तक हमारे दिल के खास, दिल के पास नहीं हो कोई। और दिल से तो सिर्फ हम अनुरोध ही कर सकते हैं कि दिल क्या चाहता है। तो दिल की जो तड़प है वो इस अगले गीत में सुनते हैं, अनुरोध फिल्म में, किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: तो शीर्षक गीत फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और शीर्षक है आज का हमारा ये दिल। तो दिल की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द ज़रूर आगे आता है, सामने आता है कि दिल तो पागल है।

दिल तो पागल है और दिल दीवाना है, तो दिल के कितने नाम हैं ये भी आप देखिए। और इस दीवानगी में, इस पागलपन में दिल का क्या हाल हो जाता है, सुनते हैं अगले गीत में सरफरोश फिल्म के।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: तो जब ये दिल की बातें हो रही हैं, तो दिल की बातों में दिल के रिश्ते कैसे होते हैं वो जाने इस गीत में अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में।

दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। वाकई में दिल के जो रिश्ते होते हैं, जो बहुत ही नाजुक नाजुक डोर से बंधे होते हैं, बस हमें हर पल हर क्षण उन नाजुक डोरों के साथ उन रिश्तों को बांध कर रखना है और हमेशा समेट कर रखना है उन रिश्तों को अपने दिल के अंदर। तो चलिए अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, निकाह फिल्म का, सलमा आगा की आवाज़ है। क्योंकि दिल की जब बातें होती हैं तब कुछ आंसू भी दिल की बातें बयां कर जाते हैं।

तो कुछ दिल के अरमान ऐसे होते हैं जो आंसुओं के साथ बह तो जाते हैं, पर फिर भी जो दिल है वो किसी न किसी के लिए धड़कता ज़रूर है। सुनते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को आशिकी फिल्म के इस गीत में।

चुराओ न दिल मेरा सनम, कुमार सानू और संजीवनी को अभी आपने सुना। और दिल तो चुरा लिया किसी न किसी ने, पर दिल क्या चाहता है वो कौन जानता है भला।

तो दिल क्या चाहता है ये तो आपने भी सुना और हमने भी सुना, पर दिल फिर भी एक बच्चा ही तो है। आइए सुनते हैं राहत फतेह अली खान की आवाज़ में इश्किया फिल्म का ये गीत।

दिल तो बच्चा है जी, राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। और इस गीत के साथ ही शीर्षक गीत दिल पर जो आज हमने आपको सुनाए, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, सवेरे के 11 बज चुके हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
5: रुक जा बुड्ढू।
6: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
4: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
7: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
8: कूल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ।
1: ले ले।

0: मैं नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दादी कौन सा प्लांट है?
5: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
6: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
4: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
6: क्यों?
4: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
6: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया, ये ले तेरी समझदारी का फल।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। अगली पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं।

मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12 बज चुके हैं, लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज में बाजी फिल्म से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। आनंद लीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस पहले ट्रैक का।

वेद शर्मा की आवाज़ में मलंग फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं। फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू के युगल स्वर में, यस बॉस फिल्म से।

उदित नारायण और साधना सरगम के युगल स्वर में मोहरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम के इस सेगमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में जुबैदा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत केके की आवाज़ में जहर फिल्म से हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के सेगमेंट के इस नगमे को।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: दी, ये देख कैसे।
6: हैप्पी बर्थडे भाई।
5: दीका,
7: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
8: I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
9: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
10: I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: I know ना।
10: आरबीआई कहता है,
11: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: सचिन जिगर और अल्तमाश फरीदी की आवाज़ में जरा हट के जरा बच के फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है और अब फिल्म संगीत के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और अगला ट्रैक आपके रेडियो सेट पर पहुँचाते हैं अली परवेज मेहंदी की आवाज़ में यमला पगला दीवाना फिल्म से। एन्जॉय कीजिए इस नगमे को।

कुमार शानू और सपना मुखर्जी के युगल स्वर में यलगार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट का अगला गीत आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं नीति मोहन की आवाज़ में गदर 2 के इस गीत के साथ।

और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश हम आपके रेडियो सेट पर पहुंचा रहे हैं कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में। जो गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है वो है फिल्म दम लगा के हैशा से। एंजॉय कीजिए फिल्म संगीत के इस सेगमेंट के इस आखिरी गीत को और इजाजत दीजिए आपकी रेडियो दोस्त स्वाति को इस वादे के साथ कि दोपहर 1:45 पर आपका पसंदीदा फिल्म संगीत लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर होंगी। एंजॉय कीजिए इस सेगमेंट के इस आखिरी नगमे को।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब आपको लिए चलते हैं जयपुर अजमेर केंद्र और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को

0: कर हुई है इसके अलावा अवैध हूटर लाल नीली बत्ती प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेर बदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ईआरपी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है यहां मरीजों को एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेद ओपीडी के साथ साथ डे केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSSI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग और जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा नमस्कार
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं श्रोताओं दोपहर के 1:05 हो चुके हैं लीजिए अब सुनते हैं हमारी महिलाओं का अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी

0: राम राम सरजू भाईसा।
1: हाँ सा राम राम उपासना भाईसा राम राम।
0: भाई देखो सहेलियारी वाली कार्यक्रम होने वाली सगली बहना ने भी अपन
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा। भाई देखो जो भी कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे सब रकाम रिवाता आप ही ने हाजिर। हाँ सा
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा उपासना भाईसा। देखो जटे आपा सहेलियारी वाली कार्यक्रम में आया हाँ तो आपने किसान भाई बहना रे वास्ते आपा घनी हारी जानकारियां ले आया। और जो आपने जत्री भी गृहिणी बहना है वणा बहना रे वास्ते आपा सहेलियारी वाली कार्यक्रम रे महीने लाया हाँ कि कार्य स्थल पे महिला रे अधिकार में जो बढ़तो स्वावलंबन है वणी रे बारे में आपा जानकारी लेने आया हाँ। तो वणा ने आनी जानकारी करावा सा।
0: हाँ सा भाई देखो कटे भी और अपनी जी बहना है भी काम करे चाहे भी भले खेती बाड़ी में वो कंडे नौकरी करे या भले ही कंडे कोई का उद्योग धंधा चलता वे वटे जाइने करे कहीं ऑफिस में जाइने काम करे तो वटे वणारा कई कई अधिकार है वणा अधिकारारी वजह जे अपनी बहना है भी स्वावलंबी बन जावे। तो आनी बारा में जानकारी देवा कि भी कई कई ऐसा

0: अधिकार है, जनाऊ अपनी जीव बेना काम कर रही है वना ने मदद मिले है सा।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो बहुत ही बढ़िया आपा जो जानकारी है अणा ने बेना ने आपा दे रहा हाँ। अणियों देखे यो अणि महिला रे जो अधिकार है वे जो अधिकार अणा ने मिल रहा है तो वना अधिकारों अणारो आत्मविश्वास जो है वो भी बढ़ी रो है और लारे लारे वे आपने जीवन में समाज में एक नई दिशा भी दे रही है। जिस तरह की आपा कहवा कि आपा वणा ने सब ने प्रमुख कानूनी अधिकार रे बारे में बतावा जो स्वावलंबन ने बढ़ावो देवे जो एक आर्थिक रूप स्वतंत्रता री सीढ़ी है जो महिला रे अधिकार वणा ने मिलिया करे है सा।
0: हाँ सा देखो ऐसा कसा कसा अधिकार है ये आप बतावा सा कि देखो भारत में जी काम का जी महिला है वणा ने सशक्त बनावारे लिए बहुत सारा कानून बनाया गया है। वणामू एक है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। यो जो कानून है यो निश्चित करे है कि एक ही प्रकार का कार्य के लिए औरता ने और आदमिया ने बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि देखो आर्थिक समानता अगर वेगा तो ही औरता जो है भी स्वावलंबी बनी सकेगा।
1: बिल्कुल सर। अणिरे महीने आप देखा कि देखो मातृत्व लाभ री बात करा अने अधिनियम री बात आप करा तो संशोधन 2017 रे तहत जो कामकाजी महिला है वणारे 26 हफ्तारो संवैधानिक अवकाश मिल्यो है संवैधानिक और अणिरे महीने जो ये अवकाश मिल्यो है तो अणि में महिला जो है वो मातृत्व रे लारे लारे आपना करियर ने भी वन्ना कणी समझौता जारी राख सकरी है सा।
0: हाँ सा देखो एक और अधिनियम है पॉस एक्ट जो कि कार्यस्थल पे औरता रे साथ विवाह वाला यौन उत्पीड़न रो निवारण करे है और अंडो नाम है अधिनियम 213 जो हर संस्थान में औरता री सुरक्षा रे लिए एक आंतरिक शिकायत समिति बनावे है और यह समिति वेणो अनिवार्य है अणि नियम रे अंतर्गत जणियू कही हुए कि औरता ने सुरक्षित माहौल मिले और सुरक्षित माहौल अगर भी मिले तो भी अनिडर भी ने काम कर सके।
1: बिल्कुल सा। और लारे लारे जटे कारखाना अधिनियम संशोधन री आपा बात करा तो महिला जो है वे रात्रि पाली यानी कि आपा कह सका कि रात्र टाइम री जा शिफ्ट वे वणी में काम करवा री अनुमति देवे है बशर्त नियुक्ति देवा वाला वणा काम करवा वाली महिला जो है वे सुरक्षा और यातायात री पूरी व्यवस्था खुद करे है और असो वेवा पे महिला रे वास्ते रोजगार रा अवसर बढ़ जावे है। अणा अधिकार महीने जो लागू वेव महिला जो है वे जीवन री आर्थिक स्वतंत्रता भी वणारे महीने आई जावे है सा।
0: हाँ सा और देखो वणारी निर्णय लेवारी क्षमता भी बढ़ जावे वणा में नेतृत्व क्षमता रो भी विकास वेवे और वणा ने कृषि सखी रे रूप में नई पहचान मिले और वे खुद स्वयं सहायता समूह वणाई ने स्वावलंबी वण सके है सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो उपासना भाई सा आपणी बहना ने जो है बहुत ही बढ़िया सो यो जो जानकारी आपा लेने आया वणो वणा ने अवगत करायो तो देखो यो महिला रे वास्ते बहुत ही बढ़िया है। तो अणि में कई वेगा कि यदि ये महिला बहना जो है आपने कार्यस्थल पे महिला रे अधिकारों जो बढ़तो स्वावलंबन है वन्य बारे में भी पूरी जानकारी ली थी सा। और देखो जानकारी अरे लारे लारे जो आपणी बहना ने है कि भाई अत्री बढ़िया जानकारी लई माणी बहना तो मानो मनोरंजन भी कराई दे तो बहुत ही बढ़िया लगे सा।
0: तो भाई वणा ने हुनावा एक बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: तो सरजू भाई साहब देखो अत्रो बढ़िया सो गीत हुनायो और हाथे हाथे संदेश भी हुनाया सा।
1: हाँ सा।
0: और अबे देखो अपनी बेना ने और आपकी जानकारी करावा भाई, देखो नयो जमानो है और नयो जमाना रे हाथे नवी नवी चीज़ा आपने हीखवा मल रही है सा। तो अबार जो है आपने सबरे पास देखो मोबाइल भी वे मीडिया भी है और मोबाइल पे आप भी बहुत सारा काम करा हम।
1: बिल्कुल सा।
0: तो आना मोबाइल रे ऊपर ही में आपने बहुत सारी ऑनलाइन सेवा भी मिले हैं। तो आना ऑनलाइन सेवा री कई कई उपयोगिता है, आप ही वनारो कड़ी तरीकों बढ़िया उपयोग कर सका यो आप ही बतावा सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो जटे ऑनलाइन सेवा री उपयोगिता री बात आवे उपासना भाई सा, तो आपा देखो आपणी बेना ने कहवा कि जटे ऑनलाइन सेवा आवे वना में आधुनिक जीवन रा हर क्षेत्र ने अधिक कुशल सुलभ पारदर्शी बनायो दिया जावे। और इंटरनेट जो है कि डिजिटल तकनीका रे विस्तार में अबे लगभग हर काम जो है आपा घरे बैठिन भी कर सक रहे हैं, यो भी संभव वे गयो है।
0: हाँ सर।
1: अलग अलग क्षेत्र में ऑनलाइन सेवा री बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। और अणी तरीकों अपनी महिला बहना जो है वे कतरी बार है कि घरे बैठ न बहुत सारो काम करी सक रही है सा।
0: हाँ सर।
1: तो यह भी सेवा जो है अनु बहुत ही बढ़िया उपयोग है जो अपनी बहना अणी मैंने उपयोग में ले रही है सा।
0: हाँ सर देखो सबों पहले आप ही बात करा कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन सेवा री उपयोगिता री।
1: हाँ
0: तो
1: सा।
0: एक ऑनलाइन सेवा है ई नाम। तो आणी ऑनलाइन सेवा ने जो आप यूँ कह सका राष्ट्रीय कृषि बाजार रे जरिए किसान भाई जो है या बेना जो है वी देश री कसी भी मंडी रा व्यापारियों अपनी फसल ने सीधी बेच सके है। बच्चे बिचौलियार मदद देवारी जरूरत नहीं पड़े हैं, जणी मणा ने सही और प्रतिस्पर्धी दाम भी मिल जावे है साहब। अब प्रतिस्पर्धी दाम रो मतलब यो है कि आप भी जितनी मेहनत कर रहे हैं वंडो पूरो दाम जो है मुनाफो जो वो आपने मिल जावे है साहब।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। और में देखो कि मौसम और तकनीकी सलाहारी बात करा आपा तो मोबाइल ऐप है वन्य जरिए आपा प्राप्त करी ने किसान मौसम रो पूर्वानुमान कीट नियंत्रण रे उपाय और आधुनिक खेती जैसा हाइड्रोपोनिक्स या जैविक खेती री जानकारी करी ने घर बैठा भी आपा प्राप्त करी सक रही। हाँ
0: हाँ सा देखो सरकारी योजना जी है जैसे कि सौर पंप योजना सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा जैसी योजना रा लाभ भी अब सीधा ऑनलाइन आवेदन करने आप ही ले सका। हाँ खास तौर जी बेना है जनारे लिए बहुत उपयोगी ऐप है जिस तरह की सुकन्या समृद्धि स्वयं सहायता समूह ई जी योजना है अणारे महीने औरता जो है भी ऑनलाइन आवेदन करने सारी प्रक्रिया अंडी जान सके और अंडो लाभ ले सके है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा। अणी में देखो ई कॉमर्स और व्यापार भी महिला रे वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि घरे बैठी ने गावरी जत्री भी महिला है वे हस्तशिल्प है आचार बनावणो पापड़ बनावणा या पछे अन्य नरे हारा जो सब्जियां में काम में लेवा वे मसाला जत्रा भी वे सब घरे बैठी ने वेच वाली सुविधा भी जो है वे ऑनलाइन सेवा रे जरिए प्राप्त कर सक रही है। कहवारो मतलब यो ही से कि वे हाथों सारा मसाला वणाई ने पचवणा रा पैकेट पैक करी ने यूं भी दुकाना पे वेची सके और अगर कदी अपनी बहना अगर बाजारा में नहीं जा सक रही है तो वे ऑनलाइन रे हिसाबों फोन रे ऊपर बना फोटो वोटो भेजी ने स्टेटस लगाइन अणी तरीकों जो है वे बना धंधो चलाई सके सा।
0: हाँ सा देखो अगर कोई औरता बहुत कोई व्यापार कर रही है या कोई उद्योग धंधो शुरू करना चाहे तो वनडे लिए देखो विशेष लोन जिस तरह की मुद्रा लोन है महिला समृद्धि योजना है या और डिजिटल बैंकिंग ऐप है अनारे जरिए भी अपने व्यापार ने बहुत आसानी चलाई सके है साहब। और घर बैठा बैठा ही औरता जो है बहुत सारी ऑनलाइन सेवा जरिए कई तरह का कोर्स भी सीख सके है जिस तरह की कंप्यूटर रो कोर्स है सिलाई रो कुकिंग रो या पछे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी लेना चाहे तो भी ले सके और खुद अपनों और अपने परिवार की सुरक्षा रे बहुत बढ़िया इंतजाम भी ऑनलाइन सेवा रे जरिए कर सके है साहब।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा सा। देखो बहुत ही बढ़िया जानकारी जो है आप अपनी बहना ने दी। और अभी अगर आप कहो उपासना भाई सा तो देखो कार्यक्रम महीने आवा तो कार्यक्रम रे महीने अपनी बहनों मनोरंजन कराना भी जरूरी वे सा।
0: हाँ सा
1: तो ले ही चला गीत गुंजन री दुनिया में और करामा मनोरंजन।
0: और बढ़िया सो गीत होना ही था सा।
1: हाँ सा।

0: तो सरजू भाई साहब देखो अभी बढ़िया सो गीत सुनायो सा।
1: हाँ
0: और भाई देखो बेनारे वास्ते जानकारी तो अभी खूब सारी लाया हाँ।
1: हाँ
0: और अब आरी जब आपकी बात कर रहा है कि अपनी जी बेना है भी कोई उद्योग धंधा करे तो भाई देखो स्वावलंबी बन सके है सा। और वटे अपना भाई अधिकारा रो भी उपयोग करे और आते आते कर्तव्य रो भी पालन करती रहे तो बहुत ही बढ़िया तरीका भी अपने घर घर ने और परिवार ने संभाल सके है सा।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हूँ सा। देखो कि जटे घर परिवार री बात आवे और कटे उद्योग री बात आवे तो अणिरे महीने देखो है कि आप कह रहा हो कि जटे की महिला जो है वे अपनों घर व्यवस्थित चल ही सके तो अणि तरीको मधुमक्खी पालन उद्योग तो है और कम लागत में हाउ मुनाफो वेवे तो यो व्यवसाय जो है न केवल अणि में देखो कि अणि में शहद मोम रो उत्पादन वेवे बल्कि फसल परागण में भी सुधार वेवे जण्यू कही वेवे कि खेती री जो पैदावार है वह दन पे दन बढ़ती जावे है सा।
0: हाँ सा देखो मधुमक्खी पालन रा बहुत सारा उत्पाद जो है भी अपनी बेना कर सके और वन में बहुत सारो मुनाफो कमाई सके। क्योंकि देखो अन्य महीने कही वे कि एक तो लागत कम आवे और मुनाफो बहुत ही ज़्यादा वे तो अणी वास्ते। और अंडे में एक और बात है कैसा कि भाई आणी व्यवसाय रे लिए कणी भी उपजाऊ जमीन री भी जरूरत नहीं पड़े है
1: बिल्कुल
0: तो
1: हाँची
0: आणी
1: बात है
0: वास्ते
1: सा।
0: कहिए कि आसानी अपनी बिना कर सके है सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो अणी रे महीने शहद रे अलावा रॉयल जेली है प्रोपोलिस है मधुमक्खी रे अणी में जहर भी मिले है तो अणी में देखो खादी और ग्रामोद्योग जो आयोग है वणी रे महीने देखा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड जो है अन्य वास्ते सब्सिडी है और वनो प्रशिक्षण भी देवे है यो व्यवसाय शुरू करवा रे वास्ते छोटी मोटी कुछ बुनियादी चीज़ा है बनारी जरूरत भी वेवे है जिस तरह आपा कही सका लकड़ीरा बॉक्स वे गया जणीरे महीने मधुमक्खियाँ जो है अपना छत्ता व्यवस्थित रूपों बनाई सके सा।
0: हाँ सा देखो वन सुरक्षा रे वास्ते भी अपने कुछ सामान री जरूरत पड़े है जिस तरह की चेहरा पे लगावा रे वास्ते जाली री जरूरत पड़े है और हाथ में पहनवा रे वास्ते दस्ताना भी चावे और मोटा कपड़ा रा सूट चावे ताकि कही वे कि मधुमक्खिया रा डंक आपी बच सका। अंडे अलावा धुआं यंत्र चावे क्योंकि बक्सा ने खोलता खोलांगा तो वही टाइम पे देखो मधुमक्खिया एकदम उड़ेगा तो वड़ा ने शांत करवा रे लिए हल्को धुआं करवा वाले उपकरण जो है वंडी भी आपाने जरूरत पड़े है साम। अंडे अलावा बिना छत्तारा नुकसान पहुंचाया आपाने घूर्णन बल री मदद शहद निकालवा वाली मशीन जो है वंडी भी सहु ज़्यादा जरूरत पड़े है साम।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। देखो अणिरे महीने कही वेवे कि छोटा स्तर पे जो प्रतिदिन 50 से 100 किलोग्राम शहद है प्रोसेस रे वास्ते एक बुनियादी सेटअप री जरूरत वेवे है जणी में कच्चा शहद रे हल्को गरम करवा रे वास्ते एक प्री हीटिंग टैंक री जरूरत वेवे ताकि वो गाढ़ो न रही ने आसानी छाण्यो जाई सके सा।
0: हाँ साहब एक पाश्चुरीकृत ट्रैक री भी टैंक री भी जरूरत पड़े है फिल्ट्रेशन सिस्टम मॉइस्चर रिडक्शन यूनिट कूलिंग टैंक बॉटल फिलिंग और सीलिंग मशीनरी भी जरूरत पड़े है साहब। देखो आप ही बाजार में यदि जावांगा तो आपने ये सब चीज़ा जो है आसानी मिल जाएगा साहब। अंडे अलावा 300-500 वर्ग फीट रो एक साफ सुथरो कमरो आपने या पचे कोई छाया वाली जगह जटे पानी और बिजली री जरूरत नहीं पड़े जरूरत वेवे बड़ी बड़ी जगह री आपाने जरूरत पड़ेगा सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। देखो बहुत ही बढ़िया जो है या जानकारी भी यहाँ पर आपने बहना ने दी थी कि मधुमक्खी पालन उद्योग करीने जो आपने जितनी भी महिला बहना है वे आपनों घर जो है वो कड़ी तरीकों सुचारू रूपों चल ही सके तो आने बारे में जानकारी दी थी उपासना भाई सा।
0: हाँ सा
1: और अभी एक बार और ले चला गीत गुंजन दी दुनिया में और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा।

0: तो सरजू भाई साहब देखो बढ़िया सो आप ही गीत होना है। और भाई देखो मेला रा दन तो नहीं चल रहा है पर एक मेलो असो है जन्ने बारा में आप ही जानकारी देवा तो अपनी बेना रे लिए बहुत ही उपयोगी है सा। वैसे तो देखो मेला में जावा तो आप ही खावा पीवा बढ़िया मौज मस्ती
1: हाँ
0: करा
1: सा
0: सा,
1: हाँ सा
0: पर देखो यो जो मेलो है यो अपनी बेना रे लिए बहुत फायदे वालों मेलो है सा।
1: बिल्कुल
0: अने केवे
1: सा।
0: राज सखी मेलो।
1: देखो सा कि जटे आप राज सखी मेला री बात की थी है, तो देखो अबार जटे आप देखा कि सब अपनी बेनारे घर में नाना नाना टाबर डूब रिया है और
0: हाँ
1: बनारी चाल रही है बार छुट्टियां। तो बाकी तो मम्मिया वे जो सुबह उठे वणा टिपन वणाना वणारे बच्चा ने पाछो स्कूल लेवा जाणो छोड़नो वणी वणी में वणारो दन पूरो वे जा। तो यो समय अबार बहुत बढ़िया है कि देखो राज सखी मेला री बात आई रही है तो अणी में यदि बच्चा टाबर टूब रहा है वे भी अबार घरे ही जे तो अणी रे महीने महिला जत्री भी है जत्री भी मम्मिया है वह वणा ने समय भी मिल जावे तो यो राज सखी मेलो जो है वो अपने ही ने वे एक अपने जीवन ने एक बहुत ही बढ़िया बनाई सके सा।
0: हाँ सा देखो राज सखी मेलो जे विने केवे सरस राज सखी मेलो भी केवे है। यो राजस्थान सरकार रो राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद री तरफ आयोजित एक बहुत ही खास और लोकप्रिय मंच है। अनो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र री महिला ने स्वयं सहायता समूह रे माध्यमों आर्थिक रूपों आत्मनिर्भर और मजबूत बनानो है सा।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहे हो सा। देखो अणी मेला रा मुख्य उद्देश्य री जटे आप बात करा तो देखो ग्रामीण महिला द्वारा घर पे तैयार कीधा तका हस्तनिर्मित पारंपरिक उत्पाद ने वेचवा रे वास्ते एक बड़ो और सीधो बाजार बिचोलिया रे बिना प्रदान करनो ताकि वणा ने जो है कि मेहनत रो पूरो मूल्य मिली सके। और लारे लारे मेला रा जो मुख्य आकर्षण री आप बात करा तो उत्पादन री बात करा तो अणी में मेला में राजस्थान रे अलग अलग जिला में लारे लारे अलग राज्य में महिला समूह आई ने वणारो जगह जगह पे स्टॉल लगावे के वारो मतलब वे बढ़िया छोटी छोटी दुकाना लगावे है और अणी तरीका वो रा सखी मेलो लगाई ने वे वणारे आप भातू वणाए तका सामान है वे भी बिक्री करे और अणी तरीका वे छोटी छोटी दुकाना लगाई ने सब सखियारो आपस में मेल जोल भी वे जा सा।
0: हाँ सा देखो अणी मेला में बहुत सी तरह की चीज़ा जो औरता अपने घरे बनावे है मणाने भी देखो बेच भी सके है और खरीद भी सके है। कुछ चीज़ा जिस तरह की हाथ तू बनाई थे कि वे हाथ तू बनाए थे का कपड़ा वे हाथ तू बनाई थे कि जूतियाँ है जूटरा बैग है और कोटा डोरिया री साड़ियाँ जिस तरह वे बाड़ मेरी प्रिंट रा कपड़ा है सजावटी सामान है और बहुत सारा आभूषण मोती उणिया थे का वे कभी जूट उणिया थे का वे ऐसा जो सामान है भी वटे बेच सके हैं।
1: बिल्कुल हाँची बात कही रहा हो सा। देखो मेला रे में खाद्य सामग्री जिस तरह शुद्ध घरेलू मसाला वे गया मंगोड़ी खाकरा अचार जैविक उत्पाद में खरीदना और वेची सके है। और अणी में देखो कि जटे ये वेचे है तो अणी में उत्पादन अणी पैसा भी आई जावे वाणा रे और सखियों भी मिलनो भी वही जैसा
0: हाँ
1: तो
0: सा
1: दो दो लाभ वे रहा है अणी मेला में तो।
0: हाँ सा देखो मेला रे महीने फूड स्टॉल यानी कि खावा पीवा रे सामान री दुकाना भी लागे है। जटे राजस्थान रा पारंपरिक व्यंजन जो है भी बनाया जावे और हाथे हाथे दूसरा राज्य रा देखो लोग भी आवे बटे दूसरे राज्य री बहना भी आवे तो वटारा प्रसिद्ध व्यंजन भी वण मेला में मिले है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। देखो और शाम रा टाइम में लोक नृत्य वे संगीत वे विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित वे तो वटे आवा वाला जतरा भी लोग है वे सब मनोरंजन भी करे है। और अणी मेला में महिला रे केवल उत्पाद वेचवारो ही मौको नहीं है बल्कि राज सखी टॉक शो और वण में लाइव क्लासा अणी तरीकाओं ब्रांडिंग जैकेट पैकिंग वाला जो सामान है वे भी वे गया बिजनेस बढ़ावा रे वास्ते गुण भी सिखाया जावे। कुल मिले इन आपणो यही कहणो है कि यो जो मेलो है यो ग्रामीण हुनर कला स्वाद रो एक अनूठो संगम है जो महिला ने घूंघट और चार दीवारियों निकाल न वणा ने सफल बिजनेस वुमेन वणावे महीने वणा ने उड़ान देवे है सा।
0: हाँ तो केवारो मतलब यो है कि यो जो मेलो है यो एक तरह आनंद तो देवे ही है हाथे हाथे औरता ने बहुत ही सशक्त बनावे है मजबूत बनावे और बनाने बहुत बढ़िया कमाई रो जरियो देवे है सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। देखो अत्री बढ़िया जानकारी जो आपा लेने आया कि राज सखी मेला रे बारे में तो देखो अरे मेला री बात आई रही है तो चालता चालता क्यों ना अपनी बेना ने एक थोड़ो सो गीत

0: सा।
1: हाँ सरजू भाई सा,
0: देखो सा कि बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत सुनायो, बहुत ही बढ़िया जानकारियां दी थी अपनी बहना ने, लारे लारे आपा संदेश भी दीदा सा, और आने बहुत ही बढ़िया सा कार्यक्रम मैंने देखो कि आपने और मन कर रहे हो है कि अटे बैठा रहवा वाता चीता करा, पर देखो एकदम घड़ी री आड़ी देखियो तो आने कार्यक्रम उचालवारो टेम वे गयो, ऐसा तो चाला सा
1: हाँ सा,
0: राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम सहेलिया रीबाड़ी। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हो चुके हैं और ये समय है एक बार फिर से आपको मनोरंजन की दुनिया में ले जाने का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

आशा भोसले की आवाज में सौदागर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ फिल्म संगीत का आगाज हम कर चुके हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की मधुर आवाज में आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं फिल्म कुदरत से।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जोशीला फिल्म का ये गीत आपने सुना। दिलकश आवाज थी किशोर कुमार की। आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से किया जा रहा है। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आपके रेडियो सेट पर पहुंचाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आसपास से।

और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:10 हुए हैं और ये समय है विकास चर्चा का। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है स्वदेश दर्शन 2.0। तो सुनते हैं विकास चर्चा।

स्वदेश दर्शन 2.0 भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसे वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके।

लीजिए, इस योजना के बारे में कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसकी जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायी पर्यटन, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यटन को विकसित करना है। गंतव्य केंद्रित विकास केवल सर्किट के बजाय एक ही स्थान पर केंद्रित होकर संपूर्ण बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं का विकास करना है। स्थानीय अर्थव्यवस्था स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार और रोजगार के अवसर पैदा करना है और आत्मनिर्भर भारत को एक पूर्ण और मजबूत पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है।

इस योजना के प्रमुख क्षेत्र और थीम की जानकारी भी हम आपको देते हैं। योजना के तहत विभिन्न पर्यटन विषयों को शामिल किया गया है, जैसे संस्कृति और विरासत, ग्रामीण और सीमावर्ती पर्यटन, साहसिक और इको पर्यटन, कल्याण और तटीय पर्यटन।

0: स्वदेश दर्शन 1.0 और 2.0 में अंतर की जानकारी भी हम आपको देते हैं। स्वदेश दर्शन 1.0 यह थीम आधारित पर्यटक सर्किट जैसे रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट के विकास पर केंद्रित था, और स्वदेश दर्शन 2.0 यह वृद्धिशील विकास के बजाय एक पीढ़ीगत बदलाव है। यह किसी विशेष गंतव्य को पूरी क्षमता के साथ एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस योजना की हालिया अपडेट और फंडिंग की जानकारी भी हम आपको देते हैं। यह 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। योजना के तहत देश भर में कई गंतव्यों को विशेष ध्यान देने और विकसित करने के लिए चुना गया है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना और इसकी उप योजनाओं के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यदि आप इस योजना के बारे में विस्तार में सरकारी गाइडलाइंस और स्वीकृत स्थलों की सूची देखना चाहते हैं तो आप पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। विकास चर्चा के अंतर्गत हमारा आज का विषय था स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारत

0: भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे।

0: घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनते हैं हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम सरजू भाईसा।
1: राम राम उपासना भाईसा। राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला सगला ही जणा ने भी आपनो
1: राम राम सा। देखो सा, कृषि जगत कार्यक्रम रो टेम भी और उपासना भाईसा देखो आपा दोई तो आए ही हाँ। और लारे लारे खेमा भाई, रत्ना भाई, लामा भाई और ये बहना भी जो है, खेमी भाई, पद्मी भाई, हंगली भाइया जो है, ये सब किसान भाई बहन जो है, ये भी देखो सा कि कार्यक्रम रो आनंद लेवार वास्ते बैठ गया है सा।
0: हाँ,
1: और देखो वे भी देख रहा वेगा कि आज कृषि जगत कार्यक्रम में किसान री बात रे महीने मारी बहना जो है मने वास्ते कई कई जानकारी लेने आई है सा।
0: हाँ सा भाई, देखो जानकारियां तो अपनी किसान भाइयों रे वास्ते आप ही लाया। हाँ देखो, थोड़ी ढांडा चौपारी बात है और थोड़ी देखो आनी मौसम रे संबंधी वने आप प्राकृतिक आपदाओं कणी तरीकों बचांगा आनी बारे में आज आप ही जानकारी देवांगा सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो देखो ढांडा चौपारी बात करा तो खास सोरू ही ढांडा चौपा में मुंह पका और खुर पका रोग भी जावे तो अने फैलवाओं आपी कणी तरीकाओं रोक सका अंडे बारा में आज जानकारी देवांगा सा।
1: बिल्कुल सा। तो देखो जटे मुंह पका खुर पका री बात आवे तो या देखो कि पशुओं रे वास्ते है कि मतलब देखा कि जो नियंत्रण रो कार्यक्रम जटे है तो मुंह पका खुर पका रोग रो नियंत्रण कार्यक्रम जो चलायो तको है वो कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम रो एक मुख्य उद्देश्य जो है कि मवेशियों में खुरपका मुंहपका ने पूरी तरीकों मणि पे नियंत्रण करनो है और खुरपका मुंहपका रोग जो है कि गाया महीने, भैंस महीने, भेड़ महीने, बकरिया में तेजू फैलवा वालों एक विषाणु जनित रोग है सा।
0: हाँ सा। और देखो आनी गंभीर बीमारी ने क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है।
1: हाँ सा।
0: तो आनी बचावारे वास्ते पशुओं रो टीकाकरण करनो बहुत ही जरूरी है और आनी राणा रोग रा नियंत्रण रे वास्ते नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जावे है और संक्रमित पशुओं ने अलग राखने पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा या फिटकरी गावाने नियमित रूप सफाई की जावे है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सब बढ़िया बात की भारत सरकार जो है आनी

0: बीमारियों पशुओं और वंचावरे वास्ते मुफ्त टीकाकरण भी करी रही है सा।
1: हाँ सर।
0: और अणि में देखो वंचावरे नियंत्रण री जटे आप बात करा तो टीकाकरण जो है सरकारी दिशा निर्देशा रे अनुसार पशुओं ने हर 6 महीना में खुरपका मुंहपका रोग रो टीको जरूर लगानो चाहे। तो अणि कही वेगा कि जो पशु है वो पूरी तरह व्यवस्थित रहेगा सा।
1: हाँ सा, देखो भाई कोई भी बीमारी वो तो वन में ढांडा चोपा जो है मणा ने साफ सुथरी जगह पे रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वह गंदगी ज़्यादा फैले है।
0: हाँ सा।
1: तो अणि वास्ते जटे आप ही ढांडा चोपा ने बांधा वणी बाड़ा में अपने बहुत अच्छी सफाई रखनी चाहे, और बाड़ा ने जो जड़ी जगह पे भी रहे वटे फिनाइल अपने अच्छी तरह सफाई कर देनी चाहे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो अणि में जटे घाव और घरेलू चिकित्सा उपचार री जटे आप बात करा कि अगर पशुओं रे घाव वे गयो है तो आपने वनो घरेलू उपचार भी करनो है, और अगर घरेलू उपचार वो अगर सही नहीं वे रो है तो पचे आपने डॉक्टरी सलाह लेन वनो उपचार भी कराना है। जड़ी में आप देखा कि मुंडारी सफाई री बात करा तो 1% जटे आप घाव रे वास्ते घरेलू उपचार री बात करी रहा हाँ तो अड़में फिटकरी ले लेनी 1 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम पानी में मिलाई ने पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा जने आप कहवा वनो हल्को घोल करीने दन में 3-4 बार मुंडारे महीने पशुआ रे डाली डाली ने वनी पूर्ण रूप साफ सफाई करनी है सा।
1: हाँ सा। और देखो वनडे मोर मेरे महीने छाला भी जावे तो वनडे वास्ते बोरोग्लिसरीन या पचे शहद या पचे हल्दी रो लेप आपने लगानो चावे, और वनडे खुरारी भी आपने सफाई करनी चावे। खुरारा जी घाव है वणा ने दवारा घोल आपने धोना चावे, और वणी घाव पे मक्खियाँ नहीं बैठे और कीड़ा नहीं पड़े अणि वास्ते आपने तारपीन रो तेल जो है वंडो इस्तेमाल करना चावे सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो अणि रे महीने है कि आपा केवा कि खान पान रो भी ध्यान रखवारी बात है।
1: हाँ
0: क्योंकि जटे पशु जो है वणा ने आसानियों पचवा वालो दलियो है उबला तका चावल है गुड़ है ये सब चीज़ें अगर आपा वणा ने दे देवा तो वे आसानियों खाई लेवे है, नहीं तो वणा रो मुंडो आयो तको रेवे तो वे खाई भी नहीं सके वने चबाई भी नहीं सके। और भी नरी हारी चीज़ें ऐसी है जिस तरह चारो वे गयो ये सब चीज़ें तो ये बना रहे और मुंडो छिल ही जाएगा। अणि वास्ते ध्यान रखना है कि पशुओं ने वेती कोशिश थोड़ा दिन परेशानी तो पड़े लेकिन दलियो बनाई ने देनो उबलिया तक का चावल देना है और लाड़े लाड़े थोड़ो गुड़ भी डालनो ऐसा।
1: हाँ सा। देखो अंडे अलावा भी देखो अगर मणि वंडे शरीर में बुखार है या कोई गंभीर संक्रमण है तो तुरंत चिकित्सक को आपने सलाह लेनी चाहिए, वने डॉक्टर साहब जो केवे विस्तर वने एंटीबायोटिक और दर्द निवारक दवाइयाँ भी देनी चाहिए साहब। और देखो यह जो बीमारी है अने मैंने आप सब जना जाना ही हाँ कि मुँह में लार टपकवा लाग जावे खुरा में घाव भी जावे या कमजोरी आई जावे और जो ढांडो चोपो जो है वनडे उत्पादन में कमी आई जावे अणि वास्ते वने नियंत्रण में राखनो बहुत ही जरूरी है सा।
0: बिल्कुल सा। तो अंडे रोग नियंत्रण रे वास्ते आप एक बात कहवा कि देखो बचाव और उपाय दो ही वे ही सके पर बने वास्ते नियमित रूप पशुओं रो टीकाकरण कराना पड़ेगा ईयर टैगिंग कराना पड़ेगा घाव री सफाई करानी पड़ेगा। और अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में राखी और समय अनुसार आप करता रिया जजदी जईने जो पशु जो है वो पूर्ण रूप एकदम स्वस्थ रह सकेगा सा।
1: हाँ सा। तो भाई देखो आपने किसान भाइयारे वास्ते तो पशु धन ही मोटो धन है सा।
0: हाँ सा।
1: तो वनडे देखभाल करनी अपनी जिम्मेदारी है सा।
0: हाँ सा।
1: तो भाई कार्यक्रम रे महीने गीत संगीत होनावारी भी जिम्मेदारी अपनी है।
0: हाँ सा।
1: तो यह जिम्मेदारी निभावा और होनावा बढ़िया सो एक गीत।
0: हाँ सा।

0: टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो उपासना भाई सा,
4: हाँ सा,
3: देखो सा, बहुत ही प्यारो सो राजस्थानी गीत जो है अपना किसान भाई बहना ने आप हुनायो की इन दिल रा थे मालिक, बहुत ही बढ़िया मजेदार गीत हुनायो।
4: हाँ
3: और अपना किसान भाइया रे वास्ते बहुत ही बढ़िया बात लाया सा।
4: हाँ सा।
3: और अबे देखो अणी बहुत ही बढ़िया संगीत रे गीत रे लारे लारे अबे आपा किसान भाइया ने ले चलना पाची जानकारी री दुनिया में। और मनाने जानकारी आज या करामा की प्राकृतिक आपदाओं बचाव जो है वे किसान भाई लोग अपने कणी तरीकों कर सके सा।
4: हाँ सा, भाई देखो प्राकृतिक आपदा जो है वने आपी रोक तो नहीं सका, पर यदि वह आपदा आवे तो वणी टाइम पे आपनों कम नुकसान वे या पछे नुकसान नहीं वे असोई आपने पहली तैयारी करनी चाहिए सा, ताकि देखो आपनों घर परिवार जो है वो सुरक्षित रह सके, अपनी फसल जो है वह सुरक्षित रह सके। और देखो भाई आप ही समय मौसम रो तो कहीं कह ही नहीं सका, बीते बारिश रा दन वे तो कभी बाढ़ आई जावे, कभी भूकंप आवे, कभी तूफान आई जावे, न कभी देखो सूखो भी वही जावे।
3: हाँ
4: तो ऐसा में कहिए कि देखो सब मार तो आपने खास तौर किसान भाई पे पड़े है, क्योंकि वनारी फसल जो है वह नष्ट व्यवहारी जो है वह पूरा खतरो भी जावे। तो अणी वास्ते अपने मौसम री जानकारी जो है अगर आप पहला ले ला और हाव चेत भी जावा और सुरक्षा रा पूरा इंतजाम कर लेवा तो पछे देखो आप प्राकृतिक आपदा है वंडो अपने ऊपर ज्यादा असर नहीं वेगा सा।
3: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा। देखो ये और वतामा की सुरक्षित स्थान और बचाव रे तरीका ने समझनो जीवन बचावारो काम है।
4: हाँ
3: सामान्य आपदारी तैयारी भी आप कर सका, ताकि कहीं भी छोटी मोटी कोई आपदा वे तो वणी आप बच सका।
4: हाँ
3: तो वनी तैयारी जो है आपने पहले कर लेनी चाहे। अब जिसर की आपातकालीन किट री बात करा तो घर महीने कम उ कम 72 घंटा रे वास्ते पर्याप्त सूखो राशन राखनो है।
4: हाँ
3: पीवारे वास्ते पानी आपने कोठिया महीने भरीने राखनो है।
4: हाँ
3: और आपने छोटा मोटा जिसर दवाएं रा किट वे गयो या टोर्च वे गई, पावर बैंक वे गयो, हमेशा ये चीजें आपने कणी भी स्थिति में आपने पास में राखनी है, क्योंकि समय कंदेर कसो वे और प्राकृतिक आपदा कंदेर आवे जदि कहीं नहीं नहीं आवे तो वणी समय महीने आपने कहीं हुजे नहीं और घर में छोटा छोटा टाबर टूबरिया भी रेवे, बड़ा बुजुर्ग भी रेवे या आपा भी परेशान रहवा, तो आनी सब प्राकृतिक आपदों वंचाव रे वास्ते आपने सचेत रहना है और आपने अने आपदारी तैयारी पहले करीने रखनी है सा।
4: हाँ सा, हाँ ची बात है भाई, देखो आप ही सब तो भुगत भोगी। हाँ,
3: हाँ
4: देखो कोविड में आप ही सब जना खूब भुगतियो है सा। तो अबे आप बनियो आपने सबक लेने आगे हावचेत रहने रहना है सा। भाई देखो एक काम आपने और करना है कि अपना कोई महत्वपूर्ण पहचान पत्र जो है वी बैंक री पासबुक और कुछ नगद पैसा जो अपने अपने हाथे आपने जरूर रखना चाहिए। और घर उबाने कटे चाहिए। हाँ तो वही टाइम पे अगर आपने पास थोड़ी बहुत नकदी, आजकल के ऑनलाइन रो जमानो भी गयो,
3: हाँ
4: ज़्यादातर लोग है ही नहीं नगद पैसा पास में रखे ही नहीं, कि बैंक को फटाफट ऑनलाइन अभी ट्रांसफर कर दांगा यूँ, पर असो नहीं है कि देखो नगद पैसा भी बहुत टाइम पे जरूरत पड़े है। तो नगद पैसा आपने रखना है और अगर मान लो वर्खा रो टाइम वे असो वे तो कोई भी एक बैग थैली या वाटरप्रूफ बैग बाजार में मिले हैं आजकल तो।
3: हाँ सा।
4: तो वो आपने लारे रखना है सा।
3: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हूँ सा। लारे लारे प्लानिंग री बात करा कि आपने परिवार रे लारे आपात स्थिति रे महीने मिलवारी जगह भी तय करनी है, कि अगर अणी तरीका रो कहीं भी वे जा तो आपने सबने एक जगह मिलनो है और निकासी मार्गारो अभ्यास भी करनो है, कि आपने असी एक जगह चुन राखनी है जबकि जणी महीनो आप बाने भी निकल सका, तो असी स्थिति रे महीने आपस में मिलवारो काम भी वे जा और यो काम भी वे जा, अणी तरीको आप विभिन्न आपदाओं वंची सक रहे। हाँ सा,
4: हाँ सा, भाई देखो यह बात है कि आपदा कड़ी टाइम पे कसी आएगा यो कने भी पतो नहीं है, अणी वास्ते आपने हावचेत रहनो है और हावचेत रहने ही काम करनो है।
3: बिल्कुल सा। और देखो अणी बात ने आप आगे और जारी रखांगा उपासना भाई सा, पर देखो एक और राजस्थानी गीत अपना किसान भाई लोग हुनो चाहिए है तो हुनई दा सा।
4: हाँ सा।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: दी, ये देख कैसे?
5: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: दीका,
6: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
7: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
9: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
7: I know na.
9: RBI कहता है,
10: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
12: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
14: तो सरजू भाई साहब, देखो अत्रो बढ़िया सो गीत हुनायो और हाते हाते संदेश हुनाया।
15: हाँ,
14: और पाछा आप ही चाल रहे। हाँ भाई, अपनी जानकारी री तरफ आप ही जानकारी दे रहा कि प्राकृतिक आपदाओं बचवारे लिए आप ही कई कई तैयारी कर सका।
15: हाँ सा।
14: तो भाई देखो, कभी बाढ़ अगर आई जावे, वो बाढ़ की स्थिति हुए, तो अपने घर का निचला हिस्सा ने अपने खाली कर देना चाहे, और कहीं भी ऊंची जगह पे सुरक्षित स्थान पे अपने चालू जाना चाहे, और बिजली रा जतरा भी स्विच वे बटन में वणा ने बंद कर देना चाहे, ताकि देखो पानी यदि आएगा तो वणी बिजली रो करंट दौड़वा लाग जावे, तो वो अपने ध्यान रखनो है सा।
15: बिल्कुल सा। और देखो, तूफान या आंधी भी आवे तो अन्य दौरान अपने ध्यान रखनो है कि जतरी भी घर री खिड़कियां है, दरवाजा है, वणा ने बंद रखना है, मजबूत कंक्रीट री छतरे नीचे शरण लेनी है, और पेड़ा या बिजली खंबारे नीचे तो आपने बिल्कुल भी उबो नहीं रहनो है।
14: हाँ सा, देखो भाई, जनान तूफान आंधी आवे और बिजलियां भी चमके, तो वही टाइम पे भी आपने बिजली चमक रही है तो ये ध्यान रखना है कि खुला रहे महीने अगर आप ही, हाँ, तो कहीं भी धातुरी चीज या ऊंचा पेड़ आपने दूर रहना है सा।
15: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। और आपदा रे समय आपने घबरावनो नहीं है, शांत मन निर्णय लेना है, और सब महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपने आपातकालीन स्थिति में तुरंत स्थानीय जगह पे जानो है।
14: हाँ सा भाई, देखो, और अगर भूस्खलन है कटे पहाड़ रे आसपास आप ही रही रहा, हाँ, और वड़ा पहाड़ा रे पास में अगर कोई सुरक्षा अपने रखनी है, तो अपने यो करना है कि भाई वटे कही हुए कि पहाड़ा रे आसपास भूस्खलन वे वेदर जो आने वास्ते खास तौर पर बारिश रा पानी रे टेम पे अपने पहाड़ी जो क्षेत्र वाणा दूर रहना है और

0: निगरानी रखनी है भाई, ढलान वाली जगह है बटे कोई दरारा तो नहीं पड़ गई है, यो ध्यान रखना है, कोई सुरक्षित स्थान पे आपने चलो जानो है सा।
1: बिल्कुल सा। और जाता जाता देखो थोड़ा सा राजस्थानी गीत और होने दा सा।

0: गीत और आते आते देखो कार्यक्रम रो टेम ही गयो है, तो आप ही विदा लेवा सा, राम राम सा,
1: राम राम सा।
2: किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ

0: ये महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
1: 2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रूपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष

रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा।

0: समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। वहीं ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पेनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। हमारी पहली सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे हम एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है और अब हमारी सांध्यकालीन सभा शुरू होती है। सबसे पहले आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी, और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं हमारे मीडियम वेव और साथ साथ FM रेडियो लेक सिटी पर भी।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा एडवाइस कौन देता है?
1: ये भी कोई पूछने वाली बात है? मम्मा, खाना खा लिया, पानी पी लिया, फोन कम चलाओ, जल्दी सो जाओ, सबसे ज्यादा फिक्र वही करती है।
0: सही कहा। और बचपन में तो ऐसा लगता था कि जैसे आधी दुनिया की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारी मम्मी के ही पास है। जैसे कमजोरी लग रही है,
1: फल खाओ,
0: थक गए हो,
1: आराम करो,
0: पढ़ाई नहीं हो रही,
1: फोन रख दो। और सबसे मजेदार बात यह है कि बड़े होने के बाद समझ आता है कि उनमें से बहुत सी बातें सच भी थी, क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही आगे बढ़ जाए, एक बात नहीं बदलती, अगर इंसान स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजों का मजा भी अधूरा है।
0: और शायद इसी वजह से आज दुनिया सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों और नई टेक्नोलॉजीज की ही बात नहीं करती, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य की भी बात करती है।
1: लेकिन आज का सफर सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं होने वाला है। आज हम मिलेंगे ऐसे लोगों से जिन्होंने बर्फीले इलाकों में इतिहास रचा, ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने शब्दों से दुनिया को प्रभावित किया, और ऐसे युवाओं से जिन्होंने एक आइडिया को स्टार्टअप में बदल दिया।
0: मतलब आज कहीं फ्यूचर की बात होगी, कहीं एडवेंचर की, कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की, और कहीं उन लोगों की जिनकी कहानियां ये साबित करती है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं, बड़े इरादों से शुरू होते हैं।
1: तो अगले कुछ मिनटों तक बस हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की बातचीत में कुछ नए विचार होंगे, कुछ प्रेरणादायक किस्से होंगे, और कुछ ऐसे पड़ाव भी आएंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे।
0: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे प्रेरणा, और आप सुन रहे हैं युववाणी। तो चलिए शुरू करते हैं।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि अगर किसी बच्चे को रोज खाना मिल रहा हो तो क्या हम मान लें कि वो पूरी तरह से हेल्दी भी है?
1: पहली नज़र में तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे, लेकिन असल में इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेट भर जाना और शरीर को सही पोषण मिलना दोनों बातें अलग है।
0: और शायद यही वजह है कि हम माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मामला सिर्फ भूख का नहीं होता बल्कि न्यूट्रिशन का होता है। कई बार बच्चा खाना तो खा रहा होता है लेकिन उसे वो पोषण तत्व नहीं मिल रहे होते जिसकी उसके शरीर को और उसके दिमाग को विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
1: और जिनमें यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन भी है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुपोषण सिर्फ गरीब या भूखे लोगों की समस्या है, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि माल न्यूट्रिशन कई रूपों में दिखाई दे सकता है। कम वजन होना, उम्र के अनुसार ग्रोथ ना होना, शरीर में आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स की कमी होना, और कई बार अनहेल्दी फूड की वजह से बढ़ती ओबेसिटी भी इसका हिस्सा हो सकती है।
0: यानी एक तरफ एक बच्चा है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो रोज जंक फूड को खा रहा है और उसे सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दोनों परिस्थितियाँ अलग है लेकिन दोनों में ही हेल्थ की एक चुनौती है।
1: जिनमें अब जब हम बात करते हैं इंडिया 2047 की, तो अक्सर बुलेट ट्रेन, एआई टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटीज़ और ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जैसी हमें बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक सवाल हमारे पास यह भी है कि इन सब का फ़ायदा किसे मिलेगा?
0: बिल्कुल, लोगों को। और लोग ही अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो विकास की पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि 2047 का भारत आज के बच्चों और युवाओं के हाथों से ही बनेगा। और आज का बच्चा जो है वो स्कूल में बैठा है, वही कल साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा और शायद देश की कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा।
1: और इसीलिए न्यूट्रिशन सिर्फ हेल्थ इशू नहीं, नेशन बिल्डिंग का इशू भी है, क्योंकि एक हेल्दी चाइल्ड ही फ्यूचर में प्रोडक्टिव सिटीजन बन सकता है।
0: प्रेरणा, एक बात और, रिसर्च भी बताती है कि न्यूट्रिशन और लर्निंग का गहरा संबंध है। अगर बच्चे को सही पोषण मिलता है तो अक्सर उसके कंसंट्रेशन, मेमोरी और ओवरऑल लर्निंग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मिड डे मील जैसी योजनाएं सिर्फ भोजन देने के लिए नहीं है बल्कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए भी है।
0: लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी शुरुआत जो है वो अपने ही घर से होती है, क्योंकि हेल्दी हैबिट्स जो है वो किसी ऐप से नहीं, वो एक फैमिली से आती है।
1: बिल्कुल सही कहा। अगर घर में सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क और बैलेंस मील की आदत होगी तो उसका असर हमें लंबे समय तक दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि हेल्दी फूड हमेशा एक्सपेंसिव फूड ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं।
0: लेकिन आज की जनरेशन के सामने एक नया चैलेंज भी है। पहले चिंता भोजन की कमी थी और आज कई बार चिंता फूड चॉइसेस की भी है।
1: बिल्कुल, मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठकर खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज स्नैक्स और फास्ट फूड कल्चर ने लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक बदल दिया है। और अब हम ऐसा कह सकते हैं कि कई बार खाना पर्याप्त होता है लेकिन हमारे उस फूड में फूड न्यूट्रिशन जो है वो नहीं होता।
0: और शायद यही वजह है कि आज हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिंग से ज़्यादा बैलेंस्ड ईटिंग पर जोर देते हैं।
1: बिल्कुल, अगर हम 2047 के भारत की कल्पना करें तो ऐसा भारत जहाँ हर बच्चे को सही पोषण मिले, जहाँ एनीमिया और ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम हो, जहाँ पेरेंट्स न्यूट्रिशन के महत्व को समझे और जहाँ हेल्दी लाइफस्टाइल एक आदत बन जाए।
0: और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। पोषण अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स इसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: तो इंडिया एड 2047 सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमी का सपना नहीं है, ये हेल्दी सोसाइटी का भी सपना है।
0: क्योंकि विकसित भारत की असली ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे बल्कि स्वस्थ, समक्ष और आत्मविश्वासी नागरिक होंगे।
1: और जब हर बच्चे को सही पोषण मिलेगा तभी हर बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने का अवसर भी मिलेगा।
0: और शायद यही है विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ और बेटर फ्यूचर। What's going on? Are you ready for this one? We're about to go crazy with this show. RDB, Nicole, big up to my boy Buffy.

0: प्रेरणा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक व्यक्ति ने दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे कठिन और लगभग असंभव माने जाने वाले इलाके में पहुंचकर इतिहास रच दिया, और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयों को शब्दों में बदलकर लाखों लोगों को प्रभावित किया, तो शायद दोनों की कहानियां बिल्कुल अलग अलग लगेगी।
1: बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों में एक चीज कॉमन थी, और वो थी अपने लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। एक ने बर्फीले रास्तों को जीतकर दुनिया को चौंकाया और दूसरे ने अपनी लेखनी से लोगों की सोच को प्रभावित किया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सप्लोरर रोल्ड एमिनसन की, और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो है महान लेखक मैक्सिम गॉर्की।
0: एमिनसन का जन्म 16 जुलाई 1872 को बॉर्ज ऑस्टफोल्ड नॉर्वे में हुआ था। बचपन से ही उन्हें यात्राओं, नक्शों और खोज अभियानों में रुचि थी, लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि उनकी माँ चाहती थी कि वे एक डॉक्टर बने।
1: लेकिन कई महान कहानियाँ की तरह ही यहाँ भी दिल ने अपना रास्ता चुन लिया। माँ के निधन के बाद एमिनसन ने चिकित्सा की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन की दुनिया में उतर गए, और शायद यही फैसला इतिहास बनाने वाला साबित हुआ।
0: उस दौर में पृथ्वी के कई हिस्से ऐसे थे जहां इंसान का पहुंचना आसान नहीं था। आर्टिक और एंटार्क्टिक क्षेत्र रहस्यों से भरे हुए थे, बर्फ, तेज हवाएं, बेहद कम तापमान और जानलेवा परिस्थितियां। इस सब के बीच यात्रा करना आज भी कठिन है, तो सोचिए कि 100 साल पहले वो कितना मुश्किल रहा होगा।
1: और यहीं से शुरू हुआ एमिनसन का असाधारण सफर। उन्होंने कई आर्टिक एक्सपेडिशंस में हिस्सा लिया और धीरे धीरे पोलर एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़े नामों में वे शामिल हो गए। लेकिन जिस उपलब्धि ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया, वो थी साउथ पोल की यात्रा।
0: 14 दिसंबर 1911, ये वो तारीख है जिसे एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन एमिनसन और उनकी टीम दुनिया में पहली बार साउथ पोल तक पहुंचने में सफल हुई।
1: और खास बात ये है कि उस समय एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट भी साउथ पोल पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दुनिया की नज़रें दोनों अभियानों पर थी, लेकिन एमिनसन की प्लानिंग, प्रिपरेशन और नेविगेशन इतनी सटीक थी कि वे सबसे पहले साउथ पोल पहुंचे।
0: उनकी सफलता का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उन्होंने जो है स्थानीय परिस्थितियों को समझा। उन्होंने डॉक स्लेजेस का इस्तेमाल किया, मार्ग की एडवांस प्लानिंग करी और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया। यानी सिर्फ साहस नहीं, रणनीति में भी वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे।
1: बाद में उन्होंने एविएशन और पोलर फ्लाइट्स के क्षेत्र में भी काम किया। 1926 में वे उस एक्सपीडिशन का हिस्सा बने जिसे नॉर्थ पोल के ऊपर से सफल उड़ान भरने वालों में गिना जाता है।
0: दुर्भाग्य से 1928 में एक रेस्क्यू मिशन के दौरान उनका विमान लापता हो गया। 18 जून 1928 के बाद उनका कोई निश्चित पता नहीं चल पाया, और माना जाता है कि उसी दौरान उनका निधन हो गया। लेकिन एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री में उनका नाम आज भी सम्मानित व्यक्तियों में गिना जाता है।
1: और दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्सिम गॉर्की की। दोस्तों, उनका वास्तविक नाम था एलेक्सी मैक्सिमोविच पेशकोव। उनका जन्म 28 मार्च 1868 को निजनी नोवगोरोड रशिया में हुआ था।
0: और उनकी शुरुआती जिंदगी किसी आसान कहानी जैसी नहीं थी। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। गरीबी, संघर्ष और कठिन परिस्थितियों में उनका बचपन बीतता चला गया।
1: उन्होंने बचपन में कई तरह के काम किए, कभी मजदूरी की, कभी छोटे मोटे काम किए, और जीवन के संघर्षों को बहुत करीब से देखा। शायद यही अनुभव आगे चलकर उनकी लेखनी की ताकत बना।
0: उन्होंने अपने लिए गोर्की नाम चुना। रूस भाषा में गोर्की का अर्थ होता है बिटर, बिटर यानी कड़वा, और ये नाम उनकी शुरुआती जिंदगी के संघर्षों को भी दर्शाता था।
1: धीरे धीरे उनकी कहानियाँ और लेख लोगों तक पहुँचने लगे। उनकी रचनाओं में आम लोगों का जीवन, गरीबी, मेहनत और सामाजिक वास्तविकताएं दिखने लगी। इसी वजह से लोग उनसे आसानी से जुड़ पाते थे।
0: उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में मदर, माँ नाम बहुत ही प्रसिद्धि से लिया जाता है। इस उपन्यास को विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है। इसके अलावा उनकी आत्मकथा पुस्तकों चाइल्डहुड इन द वर्ल्ड और माय यूनिवर्सिटीज को भी काफ़ी सहारा गया।
1: और शायद यही वजह है कि गोर्की को रशियन लिटरेचर का सबसे प्रभावशाली लेखकों में गिना जाता है। उनकी लेखनी ने सिर्फ साहित्य को नहीं, समाज और राजनीति की चर्चाओं को भी प्रभावित किया।
0: 1936 में उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी दुनिया भर के साहित्य प्रेमी उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, और यही किसी लेखक की सबसे बड़ी सफलता होती है कि उसके शब्द उसके जीवन के लंबे समय तक जीवित रहते हैं।
1: और अगर गौर करें तो एमिनसन और गोर्की की दुनिया बहुत अलग थी। एक बर्फीले ध्रुवों में इतिहास बना रहे थे और दूसरे किताबों की दुनिया में।
0: लेकिन दोनों में एक समानता थी, दोनों ने कठिन रास्ते चुने, संघर्षों का सामना किया और अपने अपने क्षेत्र में एक ऐसी

0: पहचान बनाई जिसे आज भी दुनिया याद करती है।
1: दोस्तों, एम्सन हमें सिखाते हैं कि साहस और तैयारी मिल जाए तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।
0: और गॉर्की हमें ये याद दिलाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में इंसान को रोका नहीं जा सकता, कई बार वही परिस्थितियाँ उसे महान बना देती है। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे प्रेरणा का हिस्सा बन जाते हैं।

0: प्रेरणा, एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में ऐसे कितने पुराने मोबाइल फोन पड़े होंगे जिनका आज कोई इस्तेमाल भी नहीं करता।
1: बिल्कुल नहीं, फालतू का कचरा हम नहीं रखते। पर कई सारे घरों में तो एक दो मोबाइल ऐसे होंगे।

0: ही जिनका चार्जर तक नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वे लोग उन्हें फेंकते नहीं हैं।
1: और शायद यही हमारे साथ काफी सारे घरों की कहानी भी है।
0: बिल्कुल
1: नया फोन आते ही पुराना फोन ड्रॉअर में चला जाता है, फिर सालों तक वहीं पड़ा रहता है। लेकिन कुछ युवाओं ने इसी प्रॉब्लम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा।
0: दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैशिफाई के फाउंडर्स की। कैशिफाई आज भारत के सबसे लोकप्रिय रिकॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है, जहां लोग अपने पुराने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेच सकते हैं।
1: लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इसकी शुरुआत किसी बड़े ऑफिस या बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं हुई थी। कैशिफाई की स्थापना मंदीप मनोचा, नकुल कुमार, नितिन गुप्ता और विकास जायसवाल ने मिलकर की थी। शुरुआती सोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी कि जब लोग नया फ़ोन खरीदते हैं तो पुराने फ़ोन का क्या करें।
0: और शायद यही स्टार्टअप वर्ल्ड की सबसे इंटरेस्टिंग बात भी है। कई बार सबसे बड़े आइडियाज़ किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी समस्याओं से निकलते हैं।
1: कुछ साल पहले अगर किसी को पुराना मोबाइल बेचना होता था ना, तो उससे पहले तो बायर ढूंढना पड़ता था।
0: बिल्कुल
1: प्राइस को लेकर एक अलग ही कन्फ्यूज़न होती थी, ट्रस्ट इश्यूज़ का तो अलग ही कहना था, और कई लोग डेटा सिक्योरिटी की वजह से भी फ़ोन बेचने से डरते थे।
0: बिल्कुल यानी मार्केट तो थी, लेकिन प्रोसेस करना आसान नहीं था। और केशिफाई ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां कस्टमर अपने डिवाइस की वैल्यू जान सकें, उसे आसानी से सेल कर सकें और डेटा सेफ्टी को लेकर भी भरोसा महसूस कर सकें।
1: शुरुआत आसान नहीं थी। हर स्टार्टअप की तरह कैशिफाई को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मार्केट को एजुकेट करना था, ट्रस्ट बनाना था और लोगों को कन्विंस करना था कि यूज डिवाइसेस की रीसेल भी ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकती है।
0: लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करना शुरू किया और आज कैशिफाई भारत के कई शहरों में अपनी प्रेजेंस रखता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल स्टोर्स भी ऑपरेट करता है।
1: और यही स्टार्टअप जर्नी की खूबसूरती भी है, एक आइडिया, फिर एक सॉल्यूशन और धीरे धीरे वही सॉल्यूशन लाखों लोगों तक पहुंच जाता है।
0: चिन्मय, एक और इंटरेस्टिंग बात है, कैशिफाई सिर्फ बिजनेस नहीं, एनवायरनमेंट के प्रस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट आज दुनिया का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज माना जाता है।
0: बिल्कुल
1: अगर डिवाइसेस रीयूज और रिसाइकल हो तो वेस्ट कम भी हो सकता है और रिसोर्सेज की बचत होती है।
0: यानी एक तरफ कस्टमर्स को वैल्यू मिलती है, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। और शायद यही मॉडर्न स्टार्टअप्स की पहचान बनती जा रही है, प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस भी।
1: अगर युवा इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं तो शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा नई टेक्नोलॉजीज में ही नहीं छुपी होती। कई बार अपॉर्चुनिटी ऐसी प्रॉब्लम्स में होती है जिसे लोग रोज देखते हैं लेकिन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते।
0: और कैशिफाई के फाउंडर्स ने यही किया। उन्होंने एक आम समस्या को पहचाना, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाला और उसी सोल्यूशन को स्टार्टअप में बदल दिया।
1: तो कैशिफाई की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है।
0: और शायद यही यंग टेक्नोक्रेट की असली पहचान भी है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देखता, वो टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान भी खोजता है। और यही सोच एक आइडिया को स्टार्टअप और स्टार्टअप को सक्सेस स्टोरी बना देती है।

0: प्रेरणा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि खाना खाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या होता है, तो शायद जवाब होगा भूख मिटाना।
1: बिल्कुल, और अगर खाने के शौकीनों से पूछा जाए तो वे कहेंगे स्वाद। लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि तुम कोई अलग जवाब देने वाले हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज बात सिर्फ खाने की नहीं, उस सोच की है जो खाने के पीछे छिपी होती है, और इसी से जुड़ा है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, जो हर साल 18 जून को मनाया जाता है।
1: वैसे चिन्मय, ये गैस्ट्रोनॉमी शब्द सुनने में थोड़ा सा फैंसी लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, समझाओगे?
0: अगर आसान भाषा में कहूँ तो गैस्ट्रोनॉमी का संबंध फूड कल्चर से है, यानी सिर्फ खाना खाने से नहीं, बल्कि भोजन कैसे बनता है, कहाँ से आता है, उसकी परंपराएं क्या है, और उसका समाज व पर्यावरण से क्या संबंध है।
1: और इसी में आता है सस्टेनेबल, यानी टिकाऊ, मतलब ऐसा फूड सिस्टम जो आज की जरूरतें पूरी करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों को नुकसान भी ना पहुंचाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि खाना हमारी थाली तक पहुंचने से पहले एक लंबा सफ़र तय करता है। किसान मेहनत करता है, पानी का उपयोग होता है, परिवहन होता है, और फिर भोजन हमारी प्लेट तक पहुंचता है।
1: और शायद इसी वजह से आज लोकल फूड को भी काफी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली चीजें कई बार ज्यादा फ्रेश होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी कम लगता है।
0: सही कहा, और भारत जैसे देश में तो हर क्षेत्र अपना ट्रेडिशनल फूड कल्चर रखता है। राजस्थान की बाजरे की रोटी, दक्षिण भारत के मिलेट बेस्ड फूड्स, पूर्वोत्तर भारत के ट्रेडिशनल डिशेस, ये सिर्फ रेसिपीज नहीं है, ये हमारे देश की विरासत भी है।
1: बिल्कुल चिन्मय, आजकल न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी जो है उसको भी साथ में देखा जाता है, क्योंकि अगर फूड सिस्टम सस्टेनेबल होगा तो लोगों को बेहतर भोजन भी मिलेगा।
0: और यही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का मुख्य संदेश भी है, कि भोजन का सम्मान करें, फूड वेस्टेज कम से कम करें, स्थानीय किसानों का समर्थन करें, और ऐसी आदतें अपनाएं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छी हो।
1: दोस्तों, एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो है फूड वेस्ट। दुनिया के कई हिस्सों में लोग भोजन की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ काफी मात्रा में खाना बर्बाद भी हो जाता है।
0: और शायद सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत यहीं से हो सकती है, कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लें, भोजन का सम्मान करें और वेस्ट को कम से कम करने की कोशिश करें।
1: तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हमें सिर्फ खाने की कीमत नहीं, सोच समझकर खाने की सीख देता है।
0: क्योंकि अच्छी थाली सिर्फ स्वाद नहीं देती, वो स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण तीनों से जुड़ी होती है।
1: और जब हमारी फूड हैबिट्स जिम्मेदार बनती है तो उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं, पूरे समाज और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। और शायद यही सस्टेनेबल फ्यूचर की सबसे स्वादिष्ट शुरुआत है।
0: तो दोस्तों, याद रखे, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जिनमें कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि स्टार्टअप शोर मचाकर नहीं बल्कि अपनी सादगी और काम से हासिल किया जाता है।
4: बिल्कुल प्रेरणा, और आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही अभिनेता की जिन्होंने 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया और फिर अचानक फिल्मों से दूर हो गए, लेकिन जब लौटे तो पहले से भी ज़्यादा प्रभावशाली अंदाज में। हम बात कर रहे हैं अभिनेता अरविंद स्वामी की, जिनकी जयंती 18 जून को मनाई जाती है।
3: दोस्तों, अरविंद स्वामी का जन्म 18 जून 1970 को चेन्नई में हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फिल्मों में आने की कोई बड़ी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन किस्मत उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित निर्देशकों में से एक मणिरत्नम के पास ले गई।
4: और फिर आई थलपति।

0: रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्में, खासकर रोजा और बॉम्बे ने उन्हें पूरे देश में पहचान दिलाई। उनकी शांत मुस्कान, सहज अभिनय और स्क्रीन पर मौजूदगी ने उन्हें उस दौर में काफी पसंदीदा अभिनेता बना दिया।
1: लेकिन उनके जीवन की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अभिनय से दूरी बनाकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। बाद में एक गंभीर दुर्घटना और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। चलना फिरना तक मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
0: और शायद यही वजह है कि उनका जो चरित्र है वो काफी प्रेरणादायक है। संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने शानदार वापसी की और अपनी फिल्म थानी ओवरटून में सिद्धार्थ अभिमन्यु को ऐसा दमदार कैरेक्टर निभाया कि नई पीढ़ी उन्हें एक बार फिर हाथों में देख लिया।
1: बिल्कुल, उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो वो है थलपति, रोजा, बॉम्बे, मिनसारा कन्वू, कडल, थानी ओरवन, डियर डेड, चेक्का चिवंथा, वानम और थलाईवी जैसी बहुत ही शानदार फिल्में।
0: पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो थानी ओवरून में उन्हें शानदार अभिनय के लिए सिमा अवार्ड और एडिसन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में भी कई बार सहारा गया है।
1: दोस्तों अरविंद स्वामी की यात्रा हमें यह बताती है कि प्रतिभा और समर्पण समय के साथ साथ निखर जाते हैं।
0: और सिनेमा की दुनिया का दूसरा खूबसूरत पहलू यही है कि कुछ सितारे अनुभव से चमकते हैं तो कुछ अपनी उम्र के कारण बड़ी प्रतिभा के लिए।
1: हमारी अगली शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में उन्होंने कैमरे के सामने अपनी अलग पहचान बना ली
0: और आज वे भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित युवा अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। आइए मिलते हैं अभिनेत्री सारा अर्जुन से, जिनका नाम प्रतिभा, मेहनत और कम उम्र में मिली बड़ी सफलता के लिए पर्याय बन चुका है।
1: दोस्तों, सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को मुंबई में हुआ। उनके पिता राज अर्जुन स्वयं एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, लेकिन सारा ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने विज्ञापनों और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था।
0: और उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण बनी तमिल फिल्म देवड़ा थिरुमलंग। इस फिल्म में उन्होंने भावनात्मक अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। इतनी छोटी उम्र में इतनी सहज और परिपक्व अदाकारी कम ही देखने को मिलती है।
1: इसके बाद सारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फिल्मों फोटोग्राफी में 404, देवा थिरुमगल, एक थी डायन, जज्बा, सांड की आंख, पेनीन सेल्वन और हाल ही के वर्षों में रिलीज हुई धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज जैसी फिल्में शामिल हैं।
0: सारा अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने बाल कलाकार के रूप में मिली लोकप्रियता को ही अपनी मंजिल नहीं बनाया। वे लगातार सीखते हुए परिपक्व अभिनेत्री के रूप में आगे बढ़ रही है।
1: दोस्तों, सच ही कहा गया है, प्रतिभा उम्र नहीं देखती और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। जो मेहनत से अपने हुनर को निखारते हैं, वे छोटी उम्र में भी बड़ी पहचान बना लेते हैं। और दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली शख्सियत की ओर, और जिनमें आज जब हम क्रिकेट में चौके छक्कों की और की बरसात देखकर जहां हम रोमांचित होते हैं, तो शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि भारत में आक्रामक बल्लेबाजी की यह परंपरा दशकों पहले से शुरू हो चुकी थी।
0: बिल्कुल, प्रेरणा और उस परंपरा के सबसे चमकदार सितारों में से एक थे सैयद मुश्ताक अली, जिनकी पुण्यतिथि 18 जून को मनाई जाती है। उन्होंने भारतीय क्रिकेट का पहला एंटरटेनर बल्लेबाज भी कहा जाता है।
1: 17 दिसंबर 1914 को इंदौर में जन्मे सैयद मुश्ताक अली ने ऐसे समय में क्रिकेट खेला जब भारतीय क्रिकेट अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन उनकी निडर बल्लेबाजी ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया।
0: उनके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण 1936 का इंग्लैंड दौरा था। ओल्ड ट्रेफर्ड टेस्ट में उन्होंने शानदार शतक लगाया और वे इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज भी मील का पत्थर मानी जाती है।
1: दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने महान बल्लेबाज विजय मर्चेंट के साथ मिलकर भारत के लिए पहली 300 से अधिक रनों की टेस्ट साझेदारी भी की थी। उस दौर में यह एक असाधारण उपलब्धि रही।
0: घरेलू क्रिकेट में भी उनका दबदबा कम नहीं था। वे प्रसिद्ध होल्डर टीम क्रिकेट का हिस्सा रहे, जिसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती और उनके योगदान से होलकर भारतीय घरेलू क्रिकेट टीम सबसे सफल टीमों में गिनी जाती है।
1: सम्मान की बात करें तो वर्ष 1964 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान की पहचान था।
0: और शायद उनके सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। भारत का प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट उनके नाम पर खेला जाता है। आज देश में कई अंतर्राष्ट्रीय सितारे इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।
1: यानी सैयद मुश्ताक अली सिर्फ एक महान बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि भारतीय क्रिकेट में आत्मविश्वास, आक्रामकता और मनोरंजक बल्लेबाजी की सोच से के अग्रदूत थे।
0: 18 जून 2005 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका नाम हर साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के माध्यम से नई पीढ़ी के क्रिकेटरों को प्रेरित करता रहता है।
1: दोस्तों,

0: तो सच ही कहा है। कुछ लोग मैदानों में रिकॉर्ड बनाते हैं और कुछ अपनी प्रतिभा से पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। सैयद मुश्ताक अली ने क्रिकेट की दुनिया में ऐसा ही मुकाम हासिल किया।
1: और दिलचस्प बात यह है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे ही कुछ नाम सिनेमा की दुनिया में भी मिलते हैं जिन्होंने अपने दौर की परिभाषा बदल दी।
0: बिल्कुल चिन्मय, जिस तरह सैयद मुश्ताक अली ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी अलग पहचान बनाई, उसी तरह भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जिनकी खूबसूरती, व्यक्तित्व और अदाकारी के चर्चे पूरे देश में हुआ करते थे।
1: उन्हें लोग प्यार से वीनस ऑफ इंडिया कहते थे और कई बार फिल्म इतिहासकार उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार भी मानते हैं।
0: 4 जुलाई 1916 को जन्मी नसीम बानो का असली नाम था रोशन आरा बेगम। उस समय समाज में फिल्मों को सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था, खासकर महिलाओं के लिए। लेकिन नसीम बानो ने परंपराओं और सामाजिक संकोच की सीमाओं से आगे बढ़कर अपनी राह खुद बनाई।
1: कहा जाता है कि अभिनय के प्रति उनका जुनून इतना गहरा था कि विरोध और कठिनाइयों ने भी उन पर रोक नहीं लगा सकी और शायद यही साहस आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना।
0: 1930 और 1940 के दशक में जब भारतीय सिनेमा अपने शुरुआती स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रहा था, तब नसीम बानो उसकी सबसे चमकदार सितारों में से एक बन चुकी थी। तलाशे हक, खून का खून, पुकार, उजाला, नौकर, चल चल रे नौजवान, बेगम मुलाकात और अनोखी अदा जैसी फिल्मों ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया।
1: खासकर पुकार ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। लोग उनकी खूबसूरती के चर्चे तो करते ही थे, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता की भी उतनी ही प्रशंसा थी और यही कारण है कि उन्हें सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी महिला स्टार माना गया है।
0: और दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि उस समय न तो फिल्म फेयर पुरस्कार थे, न ही आज की जैसी पुरस्कार प्रणालियां, इसीलिए उनके नाम के आगे ट्रॉफियों की लंबी सूची हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन लाखों दर्शकों का प्यार, उनकी अपार लोकप्रियता और इतिहास में दर्ज उनकी पहचान ही उनका सबसे बड़ा सम्मान है।
1: और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब भारतीय सिनेमा का में महान अभिनेत्रियों की बात होती है तो नसीम बानो का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों के लिए वह रास्ता बनाया जिस पर आगे चलकर कई सितारों ने सफलता हासिल की।
0: उनकी विरासत केवल उनकी फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उनकी बेटी सायरा बानो ने भी हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और इस तरह भारतीय सिनेमा को एक खूबसूरत कलात्मक विरासत मिली।
1: 18 जून को उनकी पुण्यतिथि पर हम उस महिला को नमन करते हैं जिसने केवल पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि भारतीय सिनेमा में महिलाओं और उनके लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह!
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रिगेड तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चिन्मय, जब सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये पंक्तियां लिखी थी, तब वे सिर्फ एक कविता नहीं लिख रही थी, वे उस ज्वाला का वर्णन कर रही थी जिसने पूरे भारत को जगा दिया था।
4: चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी और उस तलवार का नाम था लक्ष्मीबाई। लेकिन प्रेरणा, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास ने उसे झांसी की रानी कहकर थोड़ा सा छोटा कर दिया?
3: बिल्कुल, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं है, यह कहानी है उस बच्ची की जिसने बचपन में अपनी माँ को खोया, उस युवती की जिसने अपने समय की परंपराओं को चुनौती दी, उस माँ की जिसने अपनी गोद उजड़ते देखी, और उस विधवा की जिसका सहारा छिन गया, और उस योद्धा की जिसने अपना राज्य, अपना सुख, अपना जीवन सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोया।
4: बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि उन्होंने कैसे युद्ध लड़ा, हम जानेंगे कि आखिर किन दर्दों, किन संघर्षों और किन बलिदानों ने मनु को लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई को अमर बना दिया।
3: तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं काशी की एक नन्ही बच्ची से, नाम था मणिकर्णिका, घर में सब प्यार से उन्हें मनु कहा करते थे।
4: लेकिन किस्मत ने मनु को जल्दी बड़ा कर दिया, बचपन में ही उनकी माँ का निधन हो गया। जिस उम्र में बच्चों को माँ की गोद चाहिए होती है, उस उम्र में मनु ने अपने आंसू छुपाना सीख लिया था।
3: शायद इसी दर्द में उन्हें असाधारण बना दिया। जहाँ उस समय लड़कियों के को घर की चौखट तक सीमित रखने की सोच थी, वहीं मनु घोड़ों की पीठ पर दौड़ रही थी, तलवार चलाना सीख रही थी और धनुष बाण साध रही थी।
4: नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे साथियों के बीच उनका बचपन बीता। वीर शिवाजी की गाथाएं उन्हें कंठस्थ थी, मानो इतिहास उन्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा हो।
3: फिर आया वर्ष 1842, जिसमें उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और मनु बन गई रानी लक्ष्मीबाई।
4: महल था, सम्मान था, झांसी की प्रजा का प्यार था, लगता था कि जीवन अब सुखद राह पर चल

0: पड़ा है।
1: लेकिन नियति ने उनके लिए संघर्षों का एक और अध्याय लिख रखा था। उनके पुत्र का जन्म हुआ, पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वह नन्हा राजकुमार दुनिया छोड़ गया।
0: सोचिए प्रेरणा, एक माँ जिसने अपनी गोद को उजड़ते देखा हो, उसके हृदय पर क्या बीती होगी।
1: समय बीता, दंपति ने एक बालक को गोद लिया, दामोदर राव। लगा कि जीवन फिर मुस्कुराने लगा है, लेकिन तभी अंग्रेजों ने कहा, हम इस बच्चे को झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे।
0: और यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने लक्ष्मीबाई को इतिहास की अमर वीरांगना बना दिया।
1: जैसे यह आघात कम था, वैसे ही कुछ समय बाद महाराजा गंगाधर राव का भी निधन हो गया।
0: अब एक युवा विधवा, एक अकेली माँ और एक संकटग्रस्त राज्य, और सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली साम्राज्यवादी ताकत।
1: अंग्रेजों को लगा कि अब झांसी को अपने अधीन करना आसान होगा। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी पर दावा ठोक दिया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे किसी साधारण शासक से नहीं बल्कि लक्ष्मीबाई से टकराने जा रहे हैं।
0: एक ऐसी रानी जिसने पुत्र खोया, पति खोया, लेकिन अपने साहस को नहीं खोया।
1: और फिर उन्होंने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
0: और दोस्तों, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक स्त्री के स्वाभिमान की हुकार थी। यह अन्य विरोध का विद्रोह था। यह उस चिंगारी की पहली लौ थी जो आगे चलकर स्वतंत्रता की मशाल के रूप में उसने जन्म लिया।
1: अंग्रेजों ने एक राज्य को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी माँ, एक ऐसी

0: एक स्त्री के स्वाभिमान की हुकार थी, यह अन्य विरोध का विद्रोह था, यह उस चिंगारी की पहली लॉ थी जो आगे चलकर स्वतंत्रता की मशाल के रूप में उसने जन्म लिया।
1: अंग्रेजों ने एक राज्य को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक ऐसी माँ, एक ऐसी रानी और एक ऐसी योद्धा को चुनौती दे रहे हैं जो अपने सम्मान, अपने पुत्र और अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ने वाली है।
0: फिर आया वर्ष 1857। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गूंज पर पूरे देश में सुनाई देने लगी। झांसी भी अब रणभूमि में बदल चुकी थी। किला चारों ओर से घिरा हुआ था, तोपें गरज रही थी और तलवारें चमक रही थी, और इतिहास अपने सबसे साहसी अध्यायों में से एक लिखने की तैयारी कर रहा था।
1: और फिर इतिहास ने वह दृश्य देखा जिसे सदियां कभी नहीं भूलेगी। एक माँ पीठ पर अपना छोटा बेटा, हाथ में तलवार और सामने अंग्रेजों की विशाल सेना।
0: उस दिन सिर्फ झांसी की रानी नहीं दौड़ रही थी, उस दिन भारत का स्वाभिमान दौड़ रहा था।
1: झांसी से कालपी, कालपी से ग्वालियर, एक युद्ध समाप्त होता तो दूसरा सामने खड़ा मिलता, लेकिन लक्ष्मीबाई थकी नहीं, झुकी नहीं।
0: और फिर आया 18 जून 1858। ग्वालियर के निकट कोटा की सराय का रण क्षेत्र, उम्र मात्र 29 वर्ष,
1: लेकिन साहस सदियों से बड़ा।
0: युद्ध करते करते वे वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग मरकर भी नहीं मरते, वे विचार बन जाते हैं, वे प्रेरणा बन जाते हैं, वे इतिहास बन जाते हैं।
1: वो हार सकती थी पर झुकना नहीं जानती थी, वो रुक सकती थी पर रुकना नहीं जानती थी, वो मर गई लेकिन पराजित कभी नहीं हुई।
0: इसलिए लक्ष्मीबाई को एक रानी नहीं है, वो एक भावना है,
1: एक इतिहास नहीं एक प्रेरणा है।
0: बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
6: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही वादा है। आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा,
9: मैं चिन्मय,
8: नमस्कार।

0: मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 6:05

0: मीडियम वेव 266.6 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र की ओर, जहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

5 मिनट हुए हैं और समय है फिल्म संगीत का। आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। इसमें आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अगला गीत इस शाम का इशारा करता हुआ, यानी कि सूरज जब ढलने लगता है और जब धीरे धीरे चांद का आगमन होने लगता है, ये शाम का समय होता है और कभी कहीं पर प्यार भी परवान चढ़ता है। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश, आप जानते ही होंगे,
7: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
8: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान

0: मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

फिल्म संगीत के इस अंक का अंतिम गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में, और जो पिछला गीत आपने सुना था ये था सोनू निगम की आवाज़ में।

0: 66.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से पहले हम सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर सुनेंगे जिले की चिट्ठी और फिर सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी। और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम की स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
3: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
1: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त

0: भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को हवा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
2: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों को नीट UG 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। NTA ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने RAC जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में ये कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के पांचवें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरुवाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और RPSC ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशी लाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों, जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री KK विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री KK विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर

0: में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालोतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है, ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालोतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम भैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98.5% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथ नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूं बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगां ने देवेला। इणु नौकरी धंधा रा 15 लाख हूं बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जदका देश भर माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 ठोड़ा रख्या जावेला।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बढ़ावण और अन्न हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा माए बोल रहा है। वह कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवण अन्न पात्र लोगों तई पुगा

किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी भै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावण और जमी हेठ पानी रा लेवल में सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी व पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया कामा में स्थानीय और हल्का अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागे करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करन री कोशिशा ने करड़ायों रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 1446 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक

0: एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करने की कोशिशा ने करड़ायू रोकी चावेला। एनटीए उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 1416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबर नवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा ने जानकारी दीनी। वे कहो कि आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावां टेम सर करावण सारू खास कोशिशां कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावां करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में आए योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूँ पहली आज जयपुर में मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम रखी जियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आरएसी रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो। वह लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित रखने री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम रखियो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूँ पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा माए प्रदेश रा उगनी हल्का माए गरज चमक सागे बारिश रा आसार है जदका आतुणी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला माए तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ माए ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। आरपीएससी लारला एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावां कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और समय हो चला है शाम के 7 बजे। तो ये समय है ग्रामीण परिवारों के दैनिक कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम सरजू भाई सा, राम राम
1: राम राम पेमा भाई, राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने अपनो
1: राम राम, राम, राम सा।
0: देखो सा किसान भाई, अपना कार्यक्रम भी टेम वी और मैं आया अपने घनी सारी जानकारी देवर वास्ते। तो खेती बाड़ी संबंधी जानकारी देवा, मौसम संबंधी जानकारी देवा, सरकारी योजना अपना वास्ते जो चली रही है वनडी जानकारी देवा, लारे लारे काम काजरी बातचीत अपना वास्ते कई वैसे के ये सब जानकारी लेना आया हाँ। तो सरजू भाई सा आप ही बैठा हाँ चौपाल रहा महीने और आज अपना किसान भाई ने आप ही जानकारी दे रहा हाँ कि उन्नत जो है लौकी को उत्पादन आप ही कणी तरह करी सका। तो लौकी के बारे में, इनके बुआई के बारे में और इनके ध्यान रखो वाली बात जो है आप ही बताओ सर।
1: बिल्कुल सा पेमा भाई, देखो लौकी जो है भारत री सब महत्वपूर्ण और लोकप्रिय सब्जियां में नू एक है सा। अन्य खेती जो है या आपने कम लागत में बहुत ही अधिक लाभ देवा वाली मानी जावे है। उन्नत लौकी उत्पादन रे वास्ते वैज्ञानिक तकनीका ने अपनावणो आवश्यक है। और नीचे जो आप देखा कि लौकी री खेती बहुत अलग अलग तरीकों वे सके, जिस सर ऊपरला खेत में भी कर सको, नीचेला खेत में भी कर सको। अणी तरीकों आपने सब बढ़िया की यदि आप लौकी री खेती करी रहा हाँ तो अणी रे महीनों सब पहला आपने जलवायु और मिट्टी कसी लेनी है, अणी बारे में भी जानकारी देनी है सा।
0: देखो सा जलवायु और मिट्टी री बात कर रहा है तो आप ही देखो कि लौकी की खेती अगर आप ही करना जिन्हें आप ही आलड़ी भी कहवा वनडी खेती कर रहे हैं तो गर्म और आर्द्र जलवायु जो है वह फसल रहा वास्ते बहुत ही बढ़िया रिया करे और अणी का विकास रहा वास्ते 25-35 डिग्री तापमान जो वेणो चावा यो सबों बढ़िया मान्यो गयो है। और मिट्टी री बात करा तो जल निकासी वाली दोमट मिट्टी जो है वह अपना आलड़ी री खेती रहा वास्ते सबों बढ़िया रहे और मिट्टी को जो पीएच मान है वो 6.5-7.5 रहा बच्चे वेणो चावे सा।
1: बिल्कुल सा पेमा भाई, अणी रे महीने देखो उन्नत किस्मारी जटे आपा बात करा और किसान भाई बहना ने आपा बतावा तो देखो हाउ पैदावार रे वास्ते उन्नत किस्मारो चुनाव जरूर करी लेनो है। वणी रे महीने किस्मारी बात करा पूसा नवीन है तो या जल्दी तैयार वेवा वाली किस्म है जहाँ गर्मी और वर्षा दो ही मौसम रे वास्ते बहुत ही उपयुक्त है। लारे लारे पूसा मंजरी री बात करा या अधिक उपज देवा वाली और रोगा रे प्रति प्रतिरोधी किस्म है। और अर्क बहार री बात करा तो या मध्यम लंबाई रे फला रे वास्ते जाने जावे है सा।
0: सही कह रहा हो सारा अणी तरह। देखो अर्क बहार नाम की जो किस्म व्या करे या मध्यम लंबाई का फल जो देवा वाली मानी जावे है। और हाइब्रिड किस्मा की बात करें तो देखो बाजार में मैंने कई तरह की संकर किस्मा जन में देखो पूसा हाइब्रिड 3 सबों बढ़िया मानी गई है और सामान्य किस्मा जो है वन की तुलना में 30-40% तक जो उत्पादन वत्तो व्यवसाय।
1: बिल्कुल हाँची बात कही रहा हो सा। अभी देखो बात आवे खेत री तैयारी और बुवाई री तो अणी रे महीने आपा बतावा किसान भाई लोगों ने कि देखो खेत री तैयारी री जटे बात आई रही है तो खेत री 2-3 बार तो घेरी जुताई करी लेनी है। वटा पछे प्रति एकड़ 10-15 टन हाउ तरी करी सड़ी तकी गोबर री खाद मिले लेनी है और पछे जो है वणी में मिट्टी ने दोई तरफ एक हरी की मिले लेनी है। जटे आपा देखा कि बुवाई रे समय री आपा बात करा तो देखो गर्मी री फसल री बुवाई रो टेम भी रेवे तो आपने करी लेनो है समय पे। और जटे वर्षा ऋतु री फसल री बात आवे तो जून और जुलाई री तो अणी तरीका बीज दर री आपा बात करा पेमा भाई तो संकर किस्मारे वास्ते 500-600 ग्राम और ब्याज किस्मारे वास्ते 1.5-2 किलो बीज जो है वने प्रति एकड़ पर्याप्त रूप महीने लेनो है। यदि जैने बीज उपचार जो है पूर्ण रूप वे सके तो अणी रे महीने भुवयू पेला बीजा ने कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित अवश्य करी लेना है सा।
0: सही कह रहा हो सा। देखो बुवाई की विधि और दूरी की बात करना तो देखो कि लौकी में देखो थाला जीना आप कह सका वणना वणाई ना अपने मेड़ा रो ऊपर जो है बुवाई करनी चाहे। दूरी की बात करना तो कतारों कतार की दूरी 2.5-3 मीटर और पौधा पौधा की दूरी 60-90 सेंटीमीटर वेणी चाहे। एक स्थान पर 2-3 बीज जो है अपना लगावना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा। और खाद और उर्वरक प्रबंधन री जटे आप बात करा तो देखो संतुलित उर्वरक रो प्रयोग जो है उत्पादन बढ़ावा में सहायक वेवे है। अणी में आप लेला की बेसल जोड़ री बात करा तो बुवाई रे समय नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश अधिक जो अन्न लेनो है कि उचित अनुपात में उचित अनुपात में लांगा जदि जैने मिट्टी परीक्षण रे आधार विया करेगा। और जटे आप टॉप ड्रेसिंग री बात करा तो बेला फैलवा वाला रे समय फूल आवारी अवस्था में यूरिया री हल्की मात्रा देनो लाभदायक वेवे है। सूक्ष्म पोषक तत्व जन्य आपा बोरान भी केवा अणीरो छिड़काव करीने फल री गुणवत्ता भी बढ़ाई देनी है सा।
0: देखो साहब पाणत री बात करा तो गर्मी का मौसम में देखो अपना 4-5 दिन अंतराल में अपना पाणत करनी चाहे और वर्षा रे टाइम पे देखो कि पानी यदि वत्तो भराई जा तो अपना जल

0: जलराशि को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जल भराव जो है वणी की वजह जड़ा सड़ जावे। और ड्रिप सिंचाई की बात करा तो देखो कि अपना सबों प्रभावी काम व्या करें वणी 30-40% तक जो है आप पानी रे वंचित कर सका और खाद जो है वो सीधो पौधा में मिल जावे सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो अगर शुरुआती अवस्था की बात करा तो खेत ने जो है कि खरपतवार मुक्त राखणो है। केवारो मतलब यो से कि खेत रे महीने जो फालतू कचरो उग्यो तको है वणी ने पूरो निकाली देनो है। और अणी तरीका आपने वनी शाखा ने निकालनी है कि वह दोबारा वणी महीने नी पनपे तो अणी चीज रो ध्यान राखणो है। लारे लारे कोई पौधा है तो वने सहारो भी देनो है। जिस तरह आप कही सका कि लोकी री खेती कर रहे हाँ तो वणी में बेलारी मचान वनानी है या जाली पे चढ़वारो सब उत्तम तकनीक है सा।
0: सही कह रहे हो सर। और लाभ री बात करना तो देखो फल की गुणवत्ता अच्छी रहे और सीधो बढ़ते दिखे अण में दिखे आपने और वहीं का सड़वा की जो संभावना वह भी कम वे जाए और तुड़ाई जो है वह भी आसान वे जावे। यो काम वे आप मचान बनावारी वजह और रोग और कीट नियंत्रण को भी आपने ध्यान देना पड़ेगा। प्रमुख कीट जो व्याकर लाल भृंग है फल मक्की है ये कीट अण में लागे अण का नियंत्रण रहा वास्ते अपन नीमड़ा रो तेल जो है वनडो छिड़काव करना चाहे फेरोमोन ट्रेप जो है वन को उपयोग अपन ने करना चाहे।
1: बिल्कुल सा। और देखो जेटे प्रमुख रोग री आप बात कर रहा तो चुरनील आसिता और मोजेक वायरस अणीरा लक्षण अगर दिख जा और फफूंद नाशक तो आपने फफूंद नाशक रो छिड़काव कर लेनो है। प्रभावित पौधा ने उखाड़ी वणा ने आपने पूरी तरीके नष्ट कर देना है। लारे लारे तुड़ई और पैदावार री बात करा तो लोकी री तुड़ई फल कोमल रेवा पे ही करनी है। अधिक पाकवा पे बीज काठा वे जावे है और बाजार में अनारो भाव कम मिलिया करे हैं। जटे तुड़ई हमेशा धारदार चाकू करी लेनी है और एक एकड़ औसत उत्पादन 150-200 क्विंटल तक प्राप्त करियो जाई सके है सा।
0: सही कह रहे हो सर। यही हिसाब कही का आप लौकी री जो है सफल खेती करा वणी टाइम पे आपने बुवाई उन्नत बीज चयन और मचान विधि जो है वन को इस्तेमाल कर वो बहुत ही जरूरी है और उर्वरक जो है वन को प्रबंधन जैविक कीट नियंत्रण यो अपनाना पड़ेगा। किसान भाई जो है टेमू टेम पे यो करता रहेगा तो इनको उत्पादन भी बहुत बढ़िया बैठेगा सा। या तो भी जानकारी है सरजू भाई सा कार्यक्रम में आया हाँ मनोरंजन भी करना चाहवा
1: बिल्कुल
0: आपके और तो सुनावा एक राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।
2: आप जानते हो ना मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: तो सरजू भाई सा राजस्थानी गीत सुनायो, कार्यक्रम ना आगे बढ़ाओ और किसान भाई ने मौसम संबंधी जानकारी देवा सा।
5: हाँ सा।
4: तो देखो सा, मौसम विज्ञान विभाग जयपुर मलिल के सूचना आधार पर कहवा की जो है तापमान अपना 37 डिग्री तक रेवरी संभावना वतई मिली है जो अधिकतम है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रेवरी संभावना वतई मिली है। सापेक्ष आर्द्रता की जो बात करा तो जो अधिकतम 65% और न्यूनतम जो है 36% तक जो रेवरी संभावना वनी लगी सा। और देखो बाणो जो अनादना में देखो वर्कर की संभावना भी बताई मिली है और बाणो जो है बावणी वेरी है नदी जगह पे वर्का भी वी है और आवा वाला दना में भी जो है वर्का वेवरी संभावना वणी लिखी है सा।
5: बिल्कुल सा। और जटे देखो सामान्य जानकारी री बात करा तो मिट्टी री नमी वणाए राखवारे वास्ते किसान भाई ने आपा सलाह देवा की पंक्तियां रे वच्चे सूखी घास फसल रा अवशेष रा पलवार रे रूप में उपयोग करी लेनो है। जटे गर्म हवाओं वंचावरे वास्ते खेतारी सीमा पे विंग ब्रेक स्ट्रिप या जूट री जाली जरूर लगानी है सा।
4: सही कह रहे हो सर। अपना मूंगफलियां की खेती अपना किसान भाई करे तो वहां केवा की जो पाणत वीर लकी देखो मूंगफली की जो बुआई है वही टाइम पे देखो उपयुक्त टाइम पे अपना जून रो महीना मतलब बाणो जो टाइम चल रही है अंडा महीने अपने दूसरे सप्ताह महीने पाणत भी करनी चाहे। और मिट्टी की जांच की जो आधार पे अपना अंतिम जुताई है वह पहली कारण जो अपना प्रति हेक्टर 250 किलोग्राम जिप्सम जो है वन की मात्रा देनी चाहे। बुआई की टाइम पे अपना प्रति हेक्टर 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 35 किलोग्राम यूरिया नायला में जो ऊर्न अपने देना चाहे सा।
5: बिल्कुल हाची बात कह रहा हूँ सा। और देखो पेमा भाई जटे आप मूंगरी बात करा और किसान भाई बहना ने आपा बतावा की मूंगरी फसल में पीरा शीरा मोजेक रोग रे रोकथाम रे वास्ते डाइमिथियोड 30 ईसी 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिले ने वणी रो छिड़काव करी लेनो है। और लारे लारे जटे आपा कपास री बात करा तो कपास में निराई गुड़ाई करी लेनी है सा।
4: सही कह रहे हो सर। बेल वाली सब्जियां की खेती बाड़ी आप ही करी रहे हाँ बिना आप ही कुष्मांड कुल की सब्जियां केवा सा। वना में देखो कि लाल ब्रंग कीट जो है वो अंकुरित रहती टाइम पे और नई पत्तियां की टाइम पे खाइन जो है फसल ने नुकसान पहुंचा और काम करे तो अंडी रोकथाम वास्ते अपना प्रयास करना पड़ेगा। अंडे वास्ते कई करना है कार्बेरिल 5% जो है चूर्ण अपना 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर जो सुबह शाम की टाइम पे अपना बुरकाव कर देनो चाहे सा।
5: और देखो सा जेटे टमाटर री बात करा तो टमाटर री खेती में देखो यो समय टमाटर री पौध वणार वास्ते उपयुक्त है। बीजा ने थायरम 205 ग्राम प्रति किलोग्राम री दर उपयुक्त करनो है और वणी रे उपचार रे बाद में बुवाई करी लेनी है।
4: और भिंडी री खेती आप कर रहा तो देखो तेज हवा चालवा की स्थिति में अच्छी अपन संभावना लागे तो अपन कई करना है कि किसान भाई ने भिंडी जो है वणी या पचे अन्य तरह की सब्जियां हैं वणी की तुड़ाई करवाने का काम अपन करना चाहे ताकि कई के संभावित तौर पर नुकसान वे वो आप ही वंची सका सा।
5: देखो सा और जटे ग्रीष्मकालीन हरा चारा री आपा बात करा तो गर्मियारा महीना में हरा चारा री कमी बहुत ज्यादा वेवे तो यह बहुत आम बात है। अणी वास्ते हरा चारा वाली फसल जिस तरह आप कही सका ज्वार वेगियो बाजरा वेगियो मक्का लोबिया अणा सब प्री खेती करनी है और लारे लारे बराबर मात्रा में अणा रही सिंचाई करनी है सा।
4: देखो सा मौसम रा लारा आप जिसान की खेती बाड़ी रो काम करा हाँ अपना शरीर को अपना खुद रो भी ध्यान रखा तो लारे लारे अपना डांडा चोपा को भी ध्यान आप ही रखना चाहवा। तो पशुपालन री बात यह है कि अपना डांडा चोपा जितना भी है वहाँ आप ही साफ जो है स्वच्छ पानी पिलावना चाहवा और यो काम आप ही करा तो लारे लारे देखो गर्मी और लू है वणी भी वंचाव रो काम आपने करना चाहे। डांडा चोपा ने छायादार हवादार जगह पे अपने बांधना चाहे और डांडा चोपा ने जो वर्का है तेज धूप है या पचे अपने प्रतिकूल मौसम मतलब कि बदलते देखो मौसम वे वणी वंचाव रो प्रयास भी अपने करना चाहे।
5: बिल्कुल सा पेमा भाई देखो बहुत ही बढ़िया मौसम री जानकारी दीदी लारे लारे पशुपालन रे वास्ते भी जानकारी दीदी खेती बाड़ी संबंधी जानकारी भी दीदी। और अबे आप के वो तो एक राजस्थानी गीत और हुणे ने मन अपने किसान भाई बहनारो मनोरंजन करावा सा।
4: हाँ सा करा मनोरंजन।

0: तो सरजू भाई साहब राजस्थानी गीत सुनाए सा और अब कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा और किसान भाई ने देवा सरकारी योजना की जानकारी, क्योंकि देखो सरकारी योजना जतरी भी चली रही है अपने ग्रामीण भाई किसान भाई सब रहा कल्याण रहा वास्ते चली रही है। तो आप सरकारी योजना में यह आज जानकारी लाया हाँ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की। अब ये योजना कई वे अंडो कई फायदो है, किस तरह आप ले सकें इनकी जानकारी देवा सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो पेमा भाई झटे आप बात करी रहे हाँ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना री, तो या भारत सरकार द्वारा छोटा और सीमांत किसाना रे बुढ़ापा ने सुरक्षित राखवा रे उद्देश्यों शुरू की दी गई एक योजना है या महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है या एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है सा।
0: अणि योजना को उद्देश्य री बात करा तो अणि योजना रा महीने मुख्य उद्देश्य यो बताई मिलियो है कि देश में अपना छोटा और सीमांत किसान जो है वणा के 60 साल उम्र वेवा के बाद में आर्थिक रूपों जो वह स्वतंत्र जो वही सके और वणा ने जो है बुढ़ापा रा महीने अपना बुनियादी जरूरत जो भी व्या करे रोज काम काज री जो जरूरत व्या करे वण पे कंडे ऊपर निर्भर नहीं बेणो पड़ेगा सा।
1: बिल्कुल सा, और झटे अणी में पात्रता री बात करा और मापदंड री बात करा पेमा भाई, तो किसान भाई लोगों ने बतावा आपा की देखो आयु सीमा री बात करा, आवेदन करता समय किसान री आयु 18-40 वर्ष रे वच में वेणी चावे। झटे आपा भूमि री सीमा री बात करा तो आवेदक रे पास 2 हेक्टर या वण्यू कम कृषि योग्य भूमि वेणी चावे और अणी रे महीने भूमि रे रिकॉर्ड वेवे बने अनुसार में। झटे आपा दूसरी बात और करा कि किसान ने कणी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना रो सदस्य वो अगर नी है तो ही वो अणि आयकर दाता रो सदस्य बन सकेगा सा।
0: देखो साहब पेंशन का जो लाभ कई व्या करें की बात करा तो देखो निश्चित पेंशन मिले सा 60 साल री आयु पूरी व्यवहार की स्थिति में। देखो लाभार्थी किसान जो है वन पर हर महीना में 3,000 रुपया जो है न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिले है और पारिवारिक पेंशन मिले जन में देखो कि यदि पेंशन प्राप्त करवा रहा वास्ते अपना किसान भाई जो योग्य है पात्र है अगर मृत्यु भी जावे तो वन में देखो जीवन साथी मतलब वन के घर वाला जो भी है वन ने जो पारिवारिक पेंशन मिल सके कुल पेंशन 50% मतलब 1500 रुपया जो है प्रति महीना वन में मिल सके है। और मृत्यु पर लाभ की बात करा तो यदि किसान भाई की कण की मृत्यु भी जाओ तो 60 साल की आयु पहली जो वन ने देखो कि जीवन साथी को

0: जो योजना है वर्ण के ऊपर भी यह योजना जारी रहे और जमा राशि जो है वर्ण ब्याज सहित जो है वापस वर्ण मिल जावे सा।
1: बिल्कुल सा। और ये देखो एक बात और या करा कि किसान ने जो है अपनी प्रवेश आयु रे आधार पे हर महीना 55 रुपया और 200 रुपया तक अंशदान करनो वेवे है सा।
0: सही कह रहे हो सर। आवेदन आपने कणी तरह करनो है योजना में यह जानकारी देवा तो देखो CSC केंद्र अपना जनी गांव डाणी में नरी जगह ब्याह करे वन में किसान भाई अपना नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जिन्हें आप कहवा इन्हें CSC भी कही सका वटे जाइन पंजीकरण कराई सके। और अणमें दस्तावेज कागज पांदड़ा री बात करा तो आवेदन करवा वास्ते अपना आधार कार्ड बैंक खाता को विवरण मतलब पासबुक और खतौनी मतलब जमीन का कागज पांदड़ा वेना चाहे। और स्वयं पंजीकरण री बात करा तो किसान भाई जो है जो पढ़िया लिखा है मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे है वे अपना आधिकारिक जो पोर्टल अंडो वणियो देखो है वण के माते ऑनलाइन आवेदन करन जो काम कर सके सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो कि अणि योजना रो प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा करियो जावे जो पेंशन फंड मैनेजर रे रूप में कार्य करे। अगर किसान बीच में अणि ने योजना ने छोड़नो चावे तो वन्ने वन्ने द्वारा जमा की गई जितनी भी राशि है वह बचत बैंक दर रे अनुसार ब्याज सहित पैसो पाछो वन्ने मिली जावे है। यह योजना किसान आरे बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीवारे आधार पे प्रदान करे है सा।
0: सही कह रहे हो सा। अपना किसान भाई देखो अणि योजना का लाभ लेना चाहे और आप ही कहवा कि कणी किसान भाई ने अणि योजना की जानकारी नहीं है तो अपना पढ़िया लिखा किसान भाई जो योजना को लाभ ले रहा है वणा को फर्ज है कि देखो वे अपना जो छोटा किसान भाई जना ने जानकारी नहीं है वणा ने जानकारी देवे वणा ने लाभ दिलाओ और पूरा प्रयास करे। और जो आवेदन करवा को तौर तरीका है अपना गाँव डाणी में ई मित्र केंद्र भी लाग रहा वटे जैन भी आप ही जानकारी ले सका और योजना के माध्यम आवेदन कर सका। तो देखो सा यह तो भी जानकारी अपना किसान भाई के वास्ते योजना की भी कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा सुना एक और राजस्थानी गीत।
1: हाँ सर।

0: कृषि को जो जोखिम प्रबंधन करना चाहे सा।
1: बिल्कुल हाँची बात कह रहा हो सा। और देखो अणी रे महीने आप प्राकृतिक उत्पादन जोखिम री जटे बात करी रहे हाँ, तो मौसम री अनिश्चितता, सूखो पड़नो, ओलावृष्टि, कीट और रोगारो प्रकोप, लारे लारे आर्थिक बाजार जोखिम री आप बात करा। और किसान भाई लोगों ने बतावा कि बाजार मूल्य में अचानक गिरावट आई जा, मांग आपूर्ति में असंतुलन, वित्तीय जोखिम, ऋण रो बोझ, कृषि आदाना और बीज खाद री लागत में वृद्धि भी वे जावे सा।
0: देखो सा, जोखिम प्रबंधन की रणनीति कणी तरह व्याकरण की जानकारी देवा तो बात यह है कि जोखिम को निवारण करना है। अण मैं कहिए कि फसल को विविधीकरण है, एक ही फसल ने आप ही निर्भर रेवार के बजाय अपन कई तरह की फसल उगाना चाहवा। यदि एक फसल खराब वे जाए तो दूजी फसल है वन में आई अतरी वे जा कि आप ही पहले वाला जो नुकसान है वी की भरपाई कर सका। और अंतः फसल को मतलब यो है कि मुख्य फसल का लारे आप ही दूजी जो सहयोगी फसल है वह भी उगाना चाहवा। तकनीकी अपनावारी बात करें तो कीट प्रतिरोधी बीज और सूखो सहनशील किस्म जो है वह आप ही उपयोग में लेना चाहवा। कृषि पद्धति की बात करें तो जल संरक्षण, मृदा परीक्षण और संतुलित उर्वरक को इस्तेमाल करवो वेग्यो इको भी जो अपना उत्पादन पे फर्क पड़े सा।
1: बिल्कुल हाची बात कह रहा हो सा। देखो अणी रे महीने फसल बीमारी आपा बात करा तो भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अणी रो सब बड़ो उदाहरण है, जो प्राकृतिक आपदाओं वेवा वाला जतरा भी नुकसान है वणीरी भरपाई करे है सा। और जटे अनुबंध खेती री आपा बात करा तो बुवाइयों पहला ही खरीदार रे लारे निश्चित मूल्य पे समझौतो करनो, जण्यू मूल्य में उतार चढ़ाव रो जोखिम कम वे जावे है सा। और जोखिम ने सहनो, सामनो करनो, घटना घट जावा रे बाद में नुकसान ने संभालवारा उपाय भी वे सा।
0: देखो साहब, जोखिम सहन करवारी बात वेरी है तो अणमें देखो बचत और बफर स्टॉक जिन्हें आप कह सका कि कठिन समय की टाइम पे अपना अनाज को भंडारण और कुछ राशि नकद जो है बचत के रूप में अपन है वेणी चावे। आय को विविधीकरण की बात करना तो खेती का लारे लारे अपना पशुपालन कर सका, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन भी सहायक जो व्यवसाय के रूप में आप कर सका। सरकारी सहायता की बात करना तो राहत पैकेज सरकार को जो मिलिया करे वो है, और अपना ऋण पुनर्गठन है या पचे सरकार द्वारा दी जाने वाली जो भी आपदा राहत है वी को लाभ उठावनो वही सके सा।
1: देखो सा, संस्थागत और नीतिगत भूमिका री बात करा तो सरकार किसानारे जोखिम ने कम करवारे वास्ते निरंतर कार्य करी रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य री आपा बात करा दी या किसानारे बाजार में कीमतारी गिरावट ने सुरक्षा प्रदान करे हैं। अने इस लारे ई नाम री बात करा तो राष्ट्रीय कृषि बाजार रे माध्यमों किसान भाई लोगा रे देश भर में बेहतर पारदर्शी मूल्य दिलावारो प्रयास करे है सा।
0: तो देखो सा, खेती बाड़ी रे महीने अपना जो भी जोखिम व्या करे वनने कम या पचे खत्म करवा की स्थिति में अपना प्रयास करना चाहे। आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण, सरकारी योजना को लाभ और यो सब तालमेल बैठाओ तो अधिकापी काम करा तो प्रभाव इको अच्छो पड़े है और अपने खेती बाड़ी में जो भी जोखिम है वो कम वही जावे। और अपने जो सजग किसान भाई है वे भी लक्ष्य रखे कि जोखिम कम करनो है, उत्पादन बढ़ावनो है। तो अपने दूसरा किसान भाई ने भी जो अणी तरह की जानकारी नहीं रखे वणाना आप ही बताए जो जोखिम वंचाई सका सा, या तो भी जानकारी कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा। सुना एक और राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो सरजू भाई सा राजस्थानी गीत सुनायो, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अबे जे जान कर देवा, आज रो दन कई खास है। आज रो दन जो खास है वन की जानकारी आप हर बार जो किसान भाई ने देवा, ग्रामीण भाई ने देवा, एको मकसद यो है कि अपना ग्रामीण भाई जो है दिन दुनिया की जानकारी वना ने मिलनी चाहे कि आज रो दन कई खास है। और आज जो है बलिदान दिवस मनायो जा रही हो रानी लक्ष्मी बाई को, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को बलिदान दिवस जो आप मनाई रहा, तो वना के जीवन के बारे में जानकारी देवा सा।
4: बिल्कुल सा, तो देखो पेमा भाई, झांसी श्री रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस भारतीय इतिहास रा सब गौरवपूर्ण और प्रेरक अध्याय में एक है। 1857 रा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वणा ने जणी अद्यम साहस और वीरता रो परिचय दीदो और वे आज भी हर भारतीय

0: वास्ते एक प्रेरणा रो स्रोत है सा।
1: देखो सा, वणा के बलिदान की पाचे की कहानी की बात करना तो स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के टाइम पे यदि अंग्रेजाओं जो है झांसी में का राज्य में देखो वणा जो सिद्धांत अपनायो कि व्यपगत करनो है, तो वणी स्थिति में कई हड़प्पा की कोशिश वणा की दी है। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वे देखो कि कसम खाई ली दी कि मैं जो झांसी नहीं देऊँ। और वणी स्थिति में कई कि अंग्रेज जो है वणाओ वणा को सामनो व्यो और अंग्रेजा ने वह चुनौती दी दी सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जटे संघर्षपूर्ण यात्रा की बात करा तो झांसी रे पतन रे बाद रानी जो है कालपीरी और प्रस्थान की दो और तात्या टोपे रे लारे मिली ने ग्वालियर रे किला पे विजय प्राप्त की दी। या बनारी रणनीति कुशलता रो प्रमाण है सा।
1: देखो साहब, बलिदान के अंतिम युद्ध की बात करना तो 18 जून 1858 जो स्थान हो ग्वालियर के बड़े देखो कोटा की सराय स्थान है, वणी जगह पे रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजा की सेना है वणा के अंतिम और निर्णायक लड़ाई भी ही सा। और अंतिम क्षण की बात करना तो युद्ध के दौरान जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है वणा ब्रिटिश सेनापति जनरल ह्यूरोज के सेनाओं जो है बहादुरियों सामनो की दो लड़ता लड़ता जो है वह घायल वे गया हा। और वीर गति की बात करना तो 18 जून 1858 मतलब 18 जून मतलब आज रो दिन जो है मात्र 29 साल की उम्र में जो है बहुत छोटी उम्र में जब वीर गति ने प्राप्त किया मातृभूमि के स्वतंत्रता वास्ते देखो प्राण वणा त्याग दीदा और इतिहास के पन्ना में देखो वीरांगना के रूप में वणा ने याद किया जावे सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे व्यक्तित्व और सैन्य कौशल रे आपा बात करा तो देखो बहुमुखी प्रतिभा बचपन मनुरे नामो जाने जावा वाली रानी लक्ष्मीबाई घुड़सवारी तलवारबाजी और निशानेबाजी में निपुण ही और नेतृत्व क्षमता की बात करा तो वणी में केवल पुरुषारी ही नहीं बल्कि महिलारी एक विशेष सैन्य टुकड़ी जनमें दुर्गा दल रो गठन की दो गयो। बनारी सेना जो है वे गुलाम गोस खान जैसा कुशल तोपची शामिल हा, बड़ी में अंग्रेजारा छक्का भी बना छुड़ाई दीदा हासा।
1: देखो साहब, विरासत और सम्मान री बात का तो देखो रानी का बलिदान दिवस के में अपना देश भर में शौर्य दिवस का रूप में मनाया जावे। वणा की वीरता में समर्पित जो अनेक कविता लोकगीत बुंदेली भाषा में बुंदेली साहित्य में अमर है। और जण में देखो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो अपने लेखिका ही वे भी देखो वणा रानी लक्ष्मीबाई के वास्ते बहुत ही ज्यादा बढ़िया कविता लिखी जो आज भी प्रसिद्ध है। स्मृति और प्रेरणा की बात करना तो ग्वालियर में स्थित एक समाधि स्थल जो है वणा को वण में अमर गाथा के प्रतीक के रूप में स्थित है। और बलिदान और न केवल वणा के समय में क्रांतिकारी में जोश भरियो बल्कि देखो आवे वाली पीढ़ी है वनडे वास्ते भी राष्ट्रवाद और बलिदान की एक मिसाल कायम की दिशा।
0: बिल्कुल सा। और देखो रानी लक्ष्मीबाई रो बलिदान केवल एक राजा या रियासत री हार नहीं ही बल्कि एक असी चिंगारी ही जण्यू भारतीय स्वतंत्रता री नीम ने और अधिक मजबूत की दो। वणारो जीवन आपणे यो सिखावे है कि न्याय और स्वतंत्रता रे वास्ते किदो गयो संघर्ष कदी भी व्यर्थ नहीं जावे सा।
1: रानी लक्ष्मीबाई को बलिदान आपने याद दिलावा कि स्वतंत्रता को मूल्य बहुत ही बड़ो व्यां करे वणा जो न केवल अपने राज्य के वास्ते बल्कि अपने भारत माता की आन बान शान का वास्ते सर्वोच्च नौछावर की दो है। आज यदि आप वणा ने याद करा वणा बलिदान जो है वणी के मौके पर आप नमन करा वणा ने और अपने देश में देखो साहस और देश प्रेम का मार्ग पर जो संकल्प लीदो हो वणा आप याद कर वणा ने नमन करा सा। या तो भी जानकारी कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा सुनाए को राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा।

तो सरजू भाई साहब राजस्थानी गीत सुनियो सर। आज का कार्यक्रम में आप ही आलडेरी जो उन्नत किस्मा की खेती आप ही कणितरों कर सक अंडी जानकारी दी थी, मौसम संबंधी जानकारी दी थी, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जानकारी दी थी, खेती बाड़ी में आप ही जोखिम को प्रबंधन कणितरों कर सकें यह भी जानकारी दी थी, और लारे लारे रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस पर उन्होंने नमन करता दी आप ही जानकारी दी थी है। जानकारी देवार वास्ते और भी है, पर घड़ी हामू नाणा तो अब कार्यक्रम जावारी टाइम वेरी है। चालासा जय जवान जय किसान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण परिवारों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए हुए इस गीत के साथ।

0: ये गीत भी अभी हम सुन रहे थे।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम सुन रहे हैं अभी। ये जो पिछला गीत था सोनू निगम की एकल स्वर में था, और अब आइए सुनते हैं अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: इसी गीत के साथ में फिल्म संगीत का ये अंक अब यहीं समाप्त करते हैं। इस गीत को भी हम सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाज़ में। मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। और अब आइए सुनते हैं समाचार संध्या और 9 बजे सुनेंगे न्यूज़ 8:09 दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और

0: प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंटकोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रेडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी

0: आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम

0: है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें।

0: और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
4: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र, और अब लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत इस गीत के साथ।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों का सफ़र आप सभी ने हमारे साथ में तय किया है, या फिर यूँ कहें कि हम सभी ने आपके साथ तय किया है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र, मीडियम वेव 266.66 मीटर अर्थात 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का समय है और आइए अब सुनते हैं ये गाना, लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाज़।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम,
0: जतिन ललित का संगीत।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक

0: पीएम आवासों का निर्माण हुआ करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत हमने सुना, इस्माइल दरबार के संगीत से बंधा हुआ। सुनते हैं अगला गीत, जिसमें उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ें हैं। संगीत नदीम श्रवण का।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और

दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।